بينهم شديد.

और उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग हैं नाफरमान। अहले दोजख और अहले बहिश्त बराबर नहीं, अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है।

मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जो समूरियूं 15 बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं। हादसे जे नतीजे में ब मुसाफिर फौत, केतिरा ई जख़्मी थी पिया। ट्रेन कराची खां पिशावर वञी रही हुई त हादसे जो शिकार थी वई। हादसे में ब मुसाफिर जी फौत थियण जी तस्दीक कई वई। रेलवे अख़्तियारनि चवणो आहे त हादसे वारे हंधि तां बोगियूं हटाए ट्रेक बहाल कराइण जूं कोशिशूं जारी आहिनि।

0: गुलशन अदीद वेझो खांगी सोसाइटी फलकनाज घर मां एक ई कुटुंब जे पंजनि भातियुनि जा लाश हथ पोचिन में गर्दणी शाहज़ैब संदसि ज़ाल सबा भेण शुमाइला मसूम बारड़ा आर्या ऐं आज़म शामिल आहिनि। पुलिस जो चवण आहे त शुरूआती जांच मूजिबि ॿिन्ही ॿारनि ऐं नारी शुमाइला खे ज़हर ॾिनो वियो ऐं गर्दणी शाहज़ैब संदसि ज़ाल सबा खे गोली लॻल आहे। पिस्टल औरत सबा जे हथ में पियल हो। वाकियो अपघात लॻी रहियो आहे। इलाइक़े वासियुनि ॿुधायो आहे त गर्दणी शाहज़ैब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो हो। आई जी सिंध आलम मोटो वाक्य जो नोटिस वठंदे डी आई जी एस्ट खां तफ़सीली रिपोर्ट तलब करे वरिती।
1: और पहले वर्किंग डे में एपिस कमेटी की मीटिंग का बुलाने का मकसद ये था कि ये जो अभी हम लोग आए जिसपे हमें वफाक ने हम पे एतमाद किया है, उस एतमाद को पूरा उतरने के लिए सबसे पहले हमारी तरजीह जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। आपको पता है कि हमारा सूबा जो दहशतगर्दी से गुजर रहा है उसमें कोई नई बात बताने की नहीं है। मैं खुद जिस इलाके से डेर इस्माइल खान से आया हूँ वहाँ हमने सालों साल दहशतगर्दी को फेस किया। समर बिलोर साहबा की फैमिली ने जो है यहाँ उसको फेस किया। बहुत से हमारे यहाँ पर हम लोगों ने फेस किया।
0: एपेक्स कमेटी जो सूबे में दहशतगर्दनि खिलाफ़ ऑपरेशन जारी रखण जो फ़ैसिलो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी जी सदारत हेठि सूबाई एपेक्स कमेटी जो इजलास। वफ़ाई घरू वज़ीर कोर कमांडर पिशावर ऐं ॿियनि अमलदारनि जी शिरकत। केपी मां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे अमुन जे बहाल लाइ फ़ैसिलाइता क़दम खणण वारे अज़म जो वर्जाव। पुलिस ऐं सी टी डी खे जदीद हथियार ॾियण जो फ़ैसिलो। पधराई में चयो वियो आहे दहशतगर्दी जो ख़ात्मो समूरनि इदारनि जे तरजीह आहे। अमुन अमान जी बहितरी लाइ समूरा वसीला इस्तेमाल कया वेंदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो त 13 सालनि जो गंद 10 महीननि में साफ़ कंदासीं। हाणे पॉलिसी जलालाबाद मां न पर इस्लामाबाद मां ईंदी। इन्हनि जो कंटेनर लावारिस हालत में बीठल आहे। इंतज़ार में आहियां त केरु काए वञे। हिन वक़्तु सोहेल आफ़रीदी जो स्टेटस ऑफलाइन आहे। केस न हूंदुसि त आज़ाद थी वेंदो। समूरो केपी पुरमुन आहे। जाली वीडियोज़ जे ख़बर पइजी वेंदी आहे। असांजे नियत साफ़ आहे। हुकूमत लैंड कंदी त सुठा नतीजा निकिरंदा। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त शहरी दहशतगर्दी खां अजपो चाहिनि था। हिननि जो ख़्यालु हो त सूबे खे जाम करे छॾींदा ऐं बायूं ॾींदा। समूरो सूबो पुरमुन आहे। 24 कलाकनि दौरान सूरत हाल खे संभालियो। केपी हुकूमत खे गॾिजे कम करण जी दरख़्वास्त कई पर हिननि न ॿुधी। सूबे में पुलिस ऐं ॿियनि ज़िलनि खे मज़बूत बणायो वेंदो। पीटीआई चेयरमैन बेरस गौर ऐं सलमान अक्रम राजा जे अपोज़िशन लीडर महमूद खान चकज़ई अलामा राजा नासिर अब्बास सां मुलाकात। केपी में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज बद वारी सूरताल ते ॻाल्हियूं। वफ़ाई हुकूमत जे क़दमनि ख़िलाफ़ अला अदलिया सां राब्तो करण ते मुशावरत। बेरस गौर सुभाणे पिशावर हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान कंदे चयो आहे त लांग मार्च ख़तमु न आहे थियो। गवर्नर राज जे एमरजेंसी ख़िलाफ़ हर फॉर्म ते वेंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत सोहेल आफ़रीदी खे तवील में वठण जी तस्दीक करे छॾी। सुबसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ताहिर चयो आहे त केपी में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज बद सोहेल आफ़रीदी खे तवील में वरितो वियो आहे। केपी काबिना जे ॿियनि मेंबर्स बाबति फ़ैसिलो एडवाइज़री काउंसिल कंदी। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त तहरीक इंसाफ़ मार्च जे नाले ते मुल्क ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कई वई हुई। इंतिहाई क़दम खणण खां सवाइ ॿियो को रस्तो न हो। कानून मूजिबि एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज लाॻायो आहे।

सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा इजलास सुभाणे थींदा। पीपल्स पार्टी ऐं नू लीग पार्लियामानी पार्टियुनि जा इजलास सॾाए वरिता। पीटीआई जे पार्लियामानी पार्टी बि सुभाणे गॾिजाणी कंदी। पीपीआई नू लीग पार्लियामेंटेज खे केपी जी सूरताल ऐं खयल क़दमनि बाबति इतमाद में वठंदी। पीटीआई पारां एतिजाज ऐं हुकूमत अमली जोड़ी वेंदी। ब्राज़ीली फ़ौज अलासत वफ़द जी एच क्यू जो दौरो कयो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाक़ात। ॿिन्ही मुल्कनि जो लाॻापंद इतमाद जो इज़हार। दिफ़ाई सरकार खे वधीक वधाइण ते इतफ़ाक़। आई एस पी आर मौजूदु फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ब्राज़ील सां दिफ़ाई लाॻापन खे मज़बूत बणाइण वारो अज़म जो अर्जाव। ब्राज़ील जे फ़ौजी सरबराह पाक फ़ौज जे पेशवराणे सलाहियतुनि ऐं ऑपरेशनल तयारियुनि खे सराहियो। इलाइक़े अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ पाक फ़ौज जे किरदार जो एतिराफ़ कयो। पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान खां दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी ख़तमु करण जो मुतालबो। इस्लामाबाद में तक़रीब खे ख़िताब कंदे नाइब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान खां रुॻो हिकु ई मुतालबो त दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती ऐं मदद बंदि करे पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन जो इस्तेमालु रोके। ख़िते में अमुन लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि खे रद्द नथो करे सघिजे। पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमला बर्दाश्त नथा करे सघजनि। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सां कयल वाइदा पाड़े। सऊदी अरब हुसियुनि जे हमलनि बाद रियाज़ एयरपोर्ट खे 17 अक्टूबर ताईं बंदि करे छॾियो। सऊदी अरब लाइ केतिरियूं ई आलमी उॾामूं मुअतल। मुसाफ़िरनि खे रवानगी खां पहिरीं जांच करण जी हिदायत। सऊदी जी तवानाई वारे वज़ीर चयो आहे त हुसियुनि जे हमलनि जो सख़्त जवाब ॾियणु घुर्जे। हमला बर्दाश्त जोगा न आहिनि। ॿिनि इस्लामी मुल्कनि में जंग जा हामी न आहियूं। ईरान सऊदी ऐं हुसियुनि में छिकताण घटाइण लाइ सालसी लाइ तयारु आहे। ईरानी परॾेह वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त इस्लामी मुल्कनि में जंग जो फ़ाइदो इसराइल खे थी रहियो आहे। अमरीकी जवाब ते गौर जारी आहे। जलसासन खे तेहरान पंहिंजो जवाबु ॾींदो। आमना हुर्मुस ते अमरीका ईरान में डेड लॉक बरक़रार। कतरी साल से अॻु बिराए कराए न सघी। आमना हुर्मुस में तेल बरदार ॿेड़नि ते हमला जारी। अमरीका बि तेहरान जे बहिरी नाकाबंदी वधीक सख़्त करे छॾी। ईरान सत शर्तुनि ते अमरीकी जवाब खे नाकाफ़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसन रज़ाई चयो आहे त अमरीका सत शर्तुनि मां कुझु खे क़बूल कयो आहे। अमरीका ॿीहर हमिलो कयो त विचोभर में मौजूदु अमरीकी डेटा सेंटर्स ऐं AI मर्कज़ तबाह करे छॾींदासीं। बलोचिस्तान जे शहर कोयटा में पाक फ़ौज जो तरबियती जहाज़ किरी तबाह। जहाज में सवार ॿई पायलट शहीद। आई एस पी आर मौजूद मुश्ताक तरबियती जहाज़ हादसे जो शिकार थियो। हादसे जे नतीजे में पायलट मेजर हसनैन शहज़ाद ऐं कैप्टन अब्दुल समद शहादत माणी। तरबियती जहाज़ फनी ख़राबी सां किरी तबाह थियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां तरबियती जहाज़ जे हादसे में ॿिनि पायलट जे शहादत ते दुख जो इज़हार। वारसनि सां हमदर्दी बि कई। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह वारा वफ़द सां गॾु चीन में थरी गॉर्जिस डैम जो दौरो। वॾे वज़ीर खे डैम में पन बिजली घर जी पैदावार सप्लाई याबे ज़खीरे ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सिंध में मौसमियात तब्दीली सभु घणो मुतासिर थी रहियो आहे। पाणी जो बहितर इस्तेमालु सिंध जे स्ट्रेटजिक तरजीह आहे। सिंधु दरिया मां वॾे मक़दार में पाणी मिले थो पर ज़खीरे जी सलाहियत महदूद आहे। ज़रई शहरी घुर्ज लाइ मुस्तक़बिल में पाणी ज़खीरे जी सलाहियत वधाइण अंटर आहे। सिंध सरकार चइनी आबेश इंतज़ामी मॉडल जो तफ़सीली जाइज़ो वठंदी। वॾे वज़ीर जे वफ़द में सीनियर वज़ीर शर्दीना महमूद जाम ख़ान छोरो ऐं ॿिया शामिल आहिनि। जकम्बा जे ज़िले काउंसिल जे मेंबर जो नौजवान पुटु कोयटिया में क़तल। हथियार बंदन बाबू ख़ुदादाद बिरोही जे पुटु ख़ालिद खे कोयटिया में निशानो बणायो।
گپچانی برسان کمند جے فصل ما نوجوان جو گولی لگ لاش ہد پولیس موج نوجوان جی سنجانب عظیم آرائن طور تھی ودک جاچ کئی پی وے بریاسٹی برسان دالی وٹ کمند جے فصل ما نوجوان جو فاؤ لگ لاش ہت نوجوان جی سنجانب گوٹ قبول کلوڑو واسی کامران کلوڑو جے نالے سے کئی وئی

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

रेलवे जो रहमान बाबा ट्रेन जूं समूरियूं 14 बोगियूं पटरीअ तां लही वयूं। हादसे सबबि पंज मुसाफ़िर फ़ौत, केतिरा ई ज़ख़्मी थी पिया। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफ़िर सवार हुआ। रेस्क्यू अमले 13 बोगियूं क्लियर करार ॾेई छॾियूं। हिकु बोगी कटे फाथल मुसाफ़िरनि खे ॿाहिरि कढियो वियो। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराचीअ खां पिशावर वञी रही हुई त शेरशाह पुल वटि हादसे जो शिकार थी वई। रेलवे खाते पारां हादसे में 5 मुसाफ़िरनि जे फ़ौत थियण जी तसदीक। रेलवे इख़्तियारनि जो चवणु आहे त हादसे वारे हंधि तां बोगियूं हटाए ट्रेक बहाल कराइण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते ॾुख जो इज़हार। ज़ख़्मी खे बहितरीन तिबी सहूलियतूं फराहम कराइण जी हिदायत।

गुलशन हदीद वेझो फलकनाज सोसाइटी के एक घर में एक ही कुटुंब के पंज भातिन जा लाश थाया फोतिन में घर धणी शाहजेब संदस जाल सबा भेण शुमायरा मासूम बारड़ा आर्या आयजन शामिल आन पुलिस जो चवण है बिन्ही बारन नारी शुमायला के जहर डेई मारण बाद घर धणी शाहजेब जाल के कतल करण बाद आपघात कयो आहे। घर जो दरवाजो अंदरा बंद थियल हो। इलाके वासिन बुधायो आहे त घर धणी शाहजेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो हो। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो वाके जो नोटिस वठंदे डीआईजी ईस्ट खां तफ़सीली रिपोर्ट तलब करे वरती।

सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा इजलास अॼु थींदा। पीपल्स पार्टी नून लीग पार्लियामेंटी पार्टियुनि जा इजलास सॾाए वरिता। पीटीआई जी पार्लियामेंटी पार्टी बि अॼु गॾिजाणी कंदी। पीपी ऐं नून लीग पार्लियामेंटरीज़ खे केवीके जी सूरत हाल ऐं ठहियल क़दमनि बाबति

जी वेंदी आहे असांजी नीयत साफ़ आहे हुकूमत लेट कंदी त सुठा नतीजा निकिरंदा वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त शहरी दहशतगर्दीअ खां आजबो चाहिनि था हुननि जो ख़्यालु हो त सूबे खे जाम करे छॾींदा ऐं बाहियूं ॾींदा समूरो सूबो पुरमन आहे 24 कलाकनि दौरान सूरतहाल खे संभालियो केपी के हुकूमत खे गॾिजी कम करण जी दरख़्वास्त कई पर हुननि न ॿुधी सूबे में पुलिस ऐं ॿियनि ज़िलनि खे मज़बूत बणायो वेंदो चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ऐं सलमान अकरम राजा जी अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई अलामा राजा ऐं नासिर अब्बास सां मुलाकात केबीके में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद वारी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं वफ़ाक़ी हुकूमत जे क़दमनि ख़िलाफ़ आला अदलिया सां राब्तो करण ते मुशावरत बैरिस्टर गोहर सुभाणे पिशावर हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान कंदे चयो आहे त लॉन्ग मार्च ख़तम नाहे थियो गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी ख़िलाफ़ हर फोरम ते वेंदासीं वफ़ाक़ी हुकूमत सुहेल आफ़रीदीअ खे तहवील में वठण जी तस्दीक करे छॾी सुज़म वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त केपीके में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद सुहेल आफ़रीदीअ खे तहवील में वरितो वियो आहे केपीके काबीना जे ॿियनि मेंबर्स बाबति फ़ैसिलो एडवाइज़र्स काउंसिल कंदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त तहरीक इंसाफ़ मार्च जे नाले ते मुल्क लाइ मुहिम शुरू कई हुई इंतिहाई क़दम खणण खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो न हो कानून मूजिबि एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज लॻायो आहे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां वफ़द सां गॾु चीन में थी गोर्जिस डैम जो दौरो वॾे वज़ीर खे डैम में पन बिजली घर जी पैदावार सप्लाई ऐं आबी ज़खीरे ते ब्रीफिंग ॾिनी वई वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध में मौसमियाती तब्दीली सबबि घणो मुतासिर थी रहियो आहे पाणीअ जो बहितर इस्तेमालु सिंध जी स्ट्रेटजिक तरजीह आहे सिंधु दरिया मां वॾी मिक़दार में पाणी मिले थो पर ज़खीरे जी सलाहियत महदूद आहे ज़रई ऐं शहरी घुर्ज लाइ मुस्तक़बिल में पाणी ज़खीरे जी सलाहियत वधाइण ते आंटर आहे सिंध सरकार चीनी आबी इंतज़ामी मॉडल जो तफ़सीली जाइज़ो वठंदे वॾे वज़ीर जे वफ़द में सीनियर वज़ीर शर्जीलीना मेमण जाम खान शोरो ऐं ॿिया शामिल आहिनि ऐं फेज़गंज वेझो वीहोवा खे 24 कलाकनि दौरान 20 फुटनि जो वधीक हिकु घारो फसुल पाणी हेठि अची विया गुज़िरियल ॾींहं पयल घारे खां थोरो अॻियां RD-78 वटि वधीक 20 फुट खां मथे घारो पियो घारे सबबि वणनि ऐं कमंद समेत ॿिया फसुल पाणी हेठि अची विया

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट
5: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

दिया तो मोहब्बत में मरा जान दिया तू हाय दिया तू न कभी दो मरी दर्द जो मारो न कभी दो मरी

गुलशन अदीद वेझो फलक नासु साॻे जे हिकु घर मां हिक ई कुटुंब जे पंज घर भातियुनि जा लाश हथ फोतुनि में घर धणी शाहज़ेब संदसि ज़ाल सबा ऐं भेण शुमाइला मासूम ॿार आर्या ऐं आयरन शामिल। पुलिस जो चवणु आहे त ॿिन्ही ॿारनि ऐं नारियुनि शुमाइला खे ज़हर ॾेई मारण बैदि घर धणी शाहज़ेब ज़ाल खे क़तल करण बैदि आबगात कयो आहे। घर जो दरवाज़ो अंदरां बंदि पियो थियल हो। इलाइक़े वासियुनि ॿुधायो आहे त घर धणी शाहज़ेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो हो। आई जी सिंध जावेद आलम ओढो वाके जो नोटिस वठंदे डी आई जी ईस्ट खां तफ़सीली रिपोर्ट तलब करे वरिती।

0: मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जूं समूरियूं 14 बोगियूं पटड़ीअ तां लही वयूं। हादसे सबबि 5 मुसाफ़िर फोती विया, केतिरा ई ज़ख़्मी थी पिया। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफ़िर सवार हुआ। रेस्क्यू अमले 13 बोगियूं क्लियर करार ॾेई छॾियूं। हिकु बोगी कटे फाथल मुसाफ़िरनि खे ॿाहिरि कढियो वञे थो। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराचीअ खां पिशावर वञी रही हुई त शेरशाह पुल वटि हादसे जो शिकार थी वई। रेलवे खाते पारां हादसे में 5 मुसाफ़िरनि जे फोत थियण जी तस्दीक। रेलवे इख़्तियारनि जो चवणु आहे त हादसे वारे हंधि तां बोगियूं हटाए ट्रेक बहाल कराइण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते डुख जो इज़हार कयो वियो। ज़ख़्मियुनि खे बहितरीन तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत।
1: सेनेट ऐं क़ौमी असेंबलीअ जा इजलास अॼु थींदा। पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पार्लियामेंट पार्टीअ जा इजलास हलाए वरिता। पीटीआई जे पार्लियामेंटी पार्टी बि अॼु गॾिजाणी कंदी। पीपी ऐं नून लीग पार्लियामेंटनि खे केपीअ जी सूरत हाल ऐं खयल क़दमनि बाबति एतमाद में वठंदी। पीटीआई पारां एहतजाज जी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी।
0: फेज़गंज वेझो वेओआ खे 24 कलाकनि दौरान 20 फुटनि जो वधीक हिकु घारो फसल पाणी हेठि अची विया। गुज़िरियल ॾींहुं पहल घारे खां थोरो अॻियां RD 78 वटि वधीक 20 फुट खां मथे घारो पियो। घारे सबबि वणनि ऐं कंध समेत ॿिया फसल पाणी हेठि अची विया।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid aur Jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: Finally, ab thoda me time banta hai. Haan to aur kya, sara din function mein busy rahi hain hum. Ab skin ki care kare, kal barat pe bhi jana hai. Tum strawberry wali, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
6: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
7: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

लोगों के दिलों को चाहत से पता करते हैं, लोगों के दिलों को हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम वाशिंगटन चिट्ठी रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सीर सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज है। कैसे हैं आप? आई होप सुखी जी, जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सागर।

Super White Products by Exo Cosmetics. Super White Products by Exo Cosmetics. इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि आपको पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं. तो खूबसूरती की सारी बातें हम आगे चल के करेंगे, और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि इस वक्त 11:16 हुए जाते हैं. पाकिस्तान का म्यारी वक्त तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है, और इसके अलावा जो लोग इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शे में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिसमें भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लदनावर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली. खुदा खैरियत मौजूदा और तवक्कुल खुदा.

0: यहाँ पर रिटर्न से तो नहीं है वो भेजे चाहिए, उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनका कहीं गैच पर सुन, और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बड़े कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों शिवरों और शराहों वादियों और पहाड़ों गलियारों में गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे बरसारों या गड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी से कहेंगे जिंदगी गुजार है।
1: जब जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं,
0: मैं हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, दिलवाने को, वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, इस गाने के साथ आपको बताऊंगे प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय एक्सा कॉस्मेटिक्स।

Okay, so beautiful song. Our song ke saath saath aap sun rahe hain Zindagi Gulzar hai, sponsored by Super White Product by Aksa Cosmetics. So Super White Products by Aksa Cosmetics, uske baare mein hum aapko batayenge. So Super White Products ke bahut saare products hain, aur sabse pehle iska helpline number aap log note down kare. So that jo log daily basis pe program sunte hain aur program sunne ke baad na products ko lene gaye hain aur products nahi mile hain, to isliye sabse pehle aap log helpline number note down kar le, so that aap apne kareebi markets aur areas mein अवेलेबल करवा सके इन प्रोडक्ट्स को. तो हेल्पलाइन नंबर है जी सखर और लालखाना वालों के लिए स्पेशली 03147574462 03147574462. ठीक है, इसके ऊपर कॉल करेंगे सखर और लालखाना वाले. इसके अलावा जी मुमताज हसन खान से आप रابطہ कर सकते हैं, जितने भी हैदराबाद के रहने वाले हैं और प्रोग्राम सुनते हैं और प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाना चाहते हैं, वहां पे मिल नहीं रहे हैं अगर. सो उनका हेल्पलाइन नंबर है 03702568321. ठीक है, तो मुमताज हसन खान जो कि हैदराबाद से जिनका ताल्लुक है, और आप इनको राबता कर सकते हैं हैदराबाद वाले जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं. सो वहां पे अवेलेबल करवाने के लिए 03702568321. ठीक है, सॉरी हैदराबाद.

Karo Larkana wale 03-14-77-544-62 dial karenge, theek hai. So ye karenge aap log. Iske ilawa ji aap log mujhe program mein join kar sakte hain teen tarikakar se kaise join karenge, unme se pehla tarikakar hai simply message karne ke liye apna mobile uthaiye, write message option mein jaiye, SKR type kijiye, space dijiye, message type kijiye, send kijiye 8881 pe. Comment karne ke liye hamara page hai GFM88 aur GL Larkana FM88.8, theek hai. Ye search karenge Facebook pe and Google pe bhi. So aapko dono jagahon pe hi search karne se hamara page mil jayega. Page pe aane ke baad aapko live audio streaming milegi jo ki hogi zindagi guzar rahegi, uske niche aap log comments ko drop kar sakte hain, theek hai. Aur iske ilawa आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03-00-11-34-88. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे और ज्वाइन हो सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं मुझे इस प्रोग्राम में. और इसके अलावा हम चलेंगे आगे और सुपर वाइट प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे. सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम, सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर. और यही नहीं, सुपर वाइट का वाइटामिन सी फेस वॉश, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश और सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, सुपर वाइट का राइस फेस वॉश. इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी खासी रेंज जो कि आपको सुपर वाइट अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले दे रहे हैं. और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपने क्वालिटी और मयार पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आपकी खूबसूरती के लिए इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं.

जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट एक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में. अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age ब्यूटी क्रीम.

0: तत्वों की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: ऐं बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहमे आहिन चावरन जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

03 70 25 68 321. ठीक है, 03 70 25 68 321.

ओके, इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे एंड सुपर वाइक प्रोडक्ट्स बाय एक्सक्यूज माय डैड, सुपर वाइक प्रोडक्ट्स जो कि सुपर से भी ऊपर हैं और आपकी ब्यूटी को भी सुपर से ऊपर लेके जाएंगे. बेफिक्र हो जाएं और सुपर से ऊपर लेके जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स जो हैं बाय करने पड़ेंगे. एंड देन जब आप इनको बाय कर लेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा खूबसूरत हैं और कितने ही ज्यादा हसीन हैं. तो सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें से ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम और उसके साथ ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तमाम उन लोगों के लिए जिनकी स्किन टाइप है ऑयली और ऑयल को जो है वो फेस कर रहे होते हैं. गर्मियां गुजार ली हैं, उसके साथ सर्दियां आ रही हैं, फेस कभी भी फ्रेश नहीं दिखता है आपके जो एक्सेसिव ऑयल होता है फेस उसकी वजह से. तो उसकी वजह से होता यह है कि फेस के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल आने लगता है और फेस के ऊपर जब ऑयल आता है तो फेस कभी भी फ्रेश नहीं लगता. आप उस चाहे उसको जितना धो लें, थोड़ी देर बाद आपका फेस ऑयली हो ही जाता है. ठीक है, तो अगर फेस को फ्रेश दिखाना चाहते हैं तो सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ये जरूर यूज करना है. ठीक है, तो ये चीज है सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, जिनमें जितने भी बार फेस को वॉश करें आपने सिर्फ और सिर्फ सुपर वाइट के ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से ही करना है. और जब आप रात को सोने लगे तो रात को सोने से पहले एक दफा फिर से फेस वॉश करने के बाद सुपर वाइट वालों की सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल क्रीम आप लोगों ने अप्लाई करनी है. अप्लाई करने के बाद आप लोग देखेंगे कि खूबसूरती इतनी ज्यादा है आपके पास और पहले ही 3 दिन में आप वाजे रिजल्ट देखेंगे. डाउन कॉम्प्लेक्शन है फेयर हो जाएगा, एक्नी है खत्म होने लगेगी, एक्नी के निशान है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, पिगमेंटेशन है, छाइयां है, चैनिंग है, सब चला जाएगा. ठीक है, विजिबल रिजल्ट देखने के लिए 3 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, और पहले ही हफ्ते में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा. तो इस रिजल्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल क्रीम को. और ये क्रीम जो है ना आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि जो लोगों की स्किन ऑयली होती है उनके फेस पे ये बहुत ज्यादा इश्यू रहता है. और यही वजह होती है कि जो आपका फेस है वो कभी भी फ्रेश नहीं दिखता, वही बात आ जाती है वहीं पे. सो अगर इसके रिजल्ट को और भी ज्यादा इनहेंस करना चाहते हैं तो इसके रिजल्ट को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर वो ऐड करेंगे इसमें. ठीक है, किसमें ऐड करेंगे? ब्यूटी क्रीम में. सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम में सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करेंगे. अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. जब दोनों चीजें यकजा हो जाएंगी तो उसको स्टोर कर लेंगे. रात को सोने से पहले अप्लाई करेंगे. ठीक है, डबल ट्रिपल और उससे भी कई ज्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. और मजे की बात आपको बताऊं, मजे की बात यह है कि जो सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर है ना, तो सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर जो आप लोग अपनी ब्यूटी क्रीम्स में ऐड कर सकते हैं, आप लोग अपने फेशियल्स में ऐड कर सकते हैं इसको, आप लोग अपनी ब्लीच क्रीम में ऐड कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सारा नहीं मिक्स करना. जब आप फेशियल कर रहे हो ना तो उसके हर स्टेप में 1 से 2 पिंच यानी कि 1 से 2 चुटकी आप लोगों ने हर स्टेप में ऐड करनी है. ठीक है, हर स्टेप में कैसे ऐड करेंगे? लाइक अगर आप क्लिंजिंग कर रहे हैं, क्लिंजिंग करते हुए जो क्वांटिटी आप अपने फेस के ऊपर लगाते हैं क्लिंजर के, उसमें आप लोगों ने 1 चुटकी ब्यूटी सीरम बूस्टर को ऐड कर लेना है. ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी. और सेम फिर उसके बाद जब स्क्रबिंग का जो वो है स्टेप है वो आता है तो आप लोगों ने फिर उसके अंदर 1 पिंच दोबारा ऐड कर देनी है. यानी कि आप इसको हर स्टेप में ऐड करके अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं. साथ अगर आप ब्लीच क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट को दोगुना करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है आप उसमें ऐड करते हैं. कुछ भी ऐड मत करें, सिंपली आप ब्लीच क्रीम लें. और अगर आप सुपर वाइट की हल्दी चंदन ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो क्या ही बात है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर. ठीक है, ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी आप लोगों ने लेनी है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है. ठीक है, लिक्विड को और जो पाउडर है और जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है उसको, और मिक्स करने के बाद जिस तरीके से आप ब्लीच करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे. ठीक है,
रिजल्ट आप देखेंगे विजिबल कि आपके जो ब्लीच के रिजल्ट है ना कितने ज्यादा अमेजिंग और कितने ज्यादा नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो ये बात है. और प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग रابطہ कर सकते हैं. सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर है 0314 77 544 62. सखर और लाड़खाना वाले डायल करेंगे 0314 77 544 62. और हैदराबाद वाले मुमताज हसन खान से राबता करेंगे 0370256832 1 0370256832 1.

0: अच्छा साथ साथ कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ चलते हैं, उसके बाद कॉल्स आप लोगों के रिसीव करेंगे। अनीस अब्बासी, अनीस हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे रुखसार खान, कैसी हो? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगी। आरजे रुखसार खान, वाओ। अच्छा इसके अलावा मीर मुमताज अली जतोई हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर सिस्टर रुखसार, बहना कैसी हो? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, माशाल्लाह बेहतरीन शो आपका, हम पूरी फैमिली के साथ सुनते हैं कि जी आपकी पूरी की पूरी फैमिली को हम खुश आमदीद कहते हैं जी, मीर मुमताज अली जतोई। इसके अलावा रशीद खोजा हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, और दोदा अली हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। नज़ीर खोजा हमें सुन रहे हैं, चाहे आप खुद को फूल बनाकर पेश कर दें या मोमबत्ती की तरह नरम पिघल जाएं, लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे इनकी फितरत है। ओके वेरी वेल सेड, वेरी नाइस। नज़ीर खोसो सोबरपुर बलूचिस्तान से, थैंक यू। कॉलर है लाइन पे, हेलो।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: सिस्टर टीगुट से साजिद का बात कर रहा हूँ।
0: सादिक कैसे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: मेरी बात ही आपके प्रोग्राम में शामिल होता रहता हूँ।
0: प्रोग्राम में शामिल होते रहते हैं, ओके। तो मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: मेरी बात ही आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा नेक्स्ट प्रोग्राम चल रहा है बाजी।
0: थैंक यू सो मच। किसके दामों से है
1: जी बाजी?
0: किसके दामों से है ये प्रोग्राम?
1: हेलो
0: हेलो, किसके दामों से प्रोग्राम है?
1: दामों से बाजी ये याद नहीं है बाजी, जिंदगी उजाला है प्रोग्राम बाजी।
0: ओके, सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं प्रोग्राम में बता रही हूँ?
1: जी जी बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे बाजी।
0: कौन से प्रोडक्ट है, नाम लेके बताएं ना, तभी तो ले पाएंगे
1: बाजी। इतना याद नहीं, प्रोग्राम सुनते हैं तो आपको बताएंगे।
0: चारे जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे
1: बाजी? आपको गाना सुनाना चाहता हूँ।
0: सुना दें।
1: किशोर में जी नजर में आए, नजर में आए, हर हंदे शहर में आए।
0: ओके ये वाला गाना आपने पहले भी सुनाया था ना
1: जी बाजी?
0: पहले भी सुनाया था ना ये गाना
1: जी? बहुत दिनों के बाद बता रहा हूँ बाजी।
0: चले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। और कोशिश किया करें कि जो गाना आप एक बार गा देना वो दोबारा मत गाया करें। तो भाई ने दो या तीन दिन पहले कॉल की थी आई गेस, सो इन्होंने ये वाला गाना सुनाया था और मैंने प्ले भी किया था। अच्छा नेक्स्ट कॉलर, हेलो।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: बाजी आपसे खान मोरा से बात कर रहा हूँ, क्या ठीक हो? ठीक है
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी सुन रहा हूँ।
0: ओके कौन सा प्रोग्राम है?
1: जिंदगी गुजार है सुपर वाइक कॉस्मेटिक।
0: ओके जी सुपर वाइक कॉस्मेटिक्स, और मुझे बताएं कि हाँ सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स कब यूज कर रहे हैं?
1: बाजी बस यूज करूंगा मैं।
0: ओके कब करेंगे, क्या यूज करेंगे सुपर वाइट वालों का?
1: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम।
0: ओके जरूर यूज कीजिएगा। गाना सुना दें जल्दी से।
1: गाना अच्छा लगा दिल की आवाज में।
0: हाँ जी
1: अब के वरना इज्जत नाराज वाही, अब के वरना इज्जत नाराज वाही, तेरी गलती थी यार नखरा बनाए चाहते नाराज वाही।
0: ओके किसको डेडिकेट कर रहे हैं
1: आप? लखनऊ में ढेर नमस्कार लंदन गवार में बेहतर संभाली जब भी समय मेरी तरफ से कॉल लेकर मेरा बताओ।
0: ओके जी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये गाना आप प्ले कर रहे हैं जी आपके लिए, इसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स, और अक्सर कॉस्मेटिक्स वालों का हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए, डायल करें 03147754462। हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03702568321।

अगेन ब्यूटीफुल सॉन्ग स्मार्ट के शो कमेंट कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. सरफराज अली हमें सुन रहे हैं. गुड इवनिंग. कहते हैं दिस इज अल्ताफ अली गढ़ी बलोच फ्रॉम कराची. ओके इस्लामिक वीडियोस हमें कमेंट कर रहे हैं जी. इस्लामिक वीडियोस कहते हैं अली हसन फ्रॉम लारकाना. नाइस शो बाजी. ओके थैंक यू भाई. और इसके साथ साथ सुपर वाइब प्रोडक्ट्स बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स. एक और गाना प्ले कर रही हूँ जी साथ साथ. और उस गाने के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद वापस आएंगे. आप भी कहीं जाएंगे मेरे साथ देने में क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइब प्रोडक्ट्स. और सुपर वाइब प्रोडक्ट्स का हेल्पलाइन नंबर है सिखर और लालकाने वाले. डायल करें 0314 77 544 62.

0: केपीए में दहशतगर्दीअ जे वाकियनि में गणतीअ जोगी वाद थी वई। खैबर पख्तूनख्वा में सदर आइन तहत एमरजेंसी लॻाई। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण चयो आहे त आइन रियासत निज़ाम ऐं मुख़्तलिफ़ हालतुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तरीक़ेकार जो तयन करे थो। शहरनि जे जाननि जो तहफ़ुज़ करणु हुकूमत जी ज़िमेवारी आहे।
1: सेनेट ऐं क़ौमी असेंबलीअ जा इजलास अॼु थींदा। पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पारां इजलासनि खां पहिरीं पार्लियामेंटी पार्टियुनि जा इजलास सरियल। पीटीआई जे पार्लियामेंटी पार्टी बि अॼु गॾिजाणी कंदी। पीपी ऐं नून लीग पार्लियामेंट्रीज खे केपी जी सूरतहाल ऐं ख़लकदमनि बाबति एतमाद में वठंदी। पीटीआई पारां एहतजाजी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी।

चीन जे दौरे ते मौजूद वडे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जे वफद सां गॾु चीन जे शहर वुहान में अॼु HBS ज़ेड कंपनी आमद कराचीअ में K4 पाइपलाइन विछाइण ऐं सखर बिरा जे दरनि जी तब्दीलीअ वारे मनसूबे ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। चीनी सीड़पकारनि पारां सिंध में सीड़पकारी करण ते दिलचस्पी ज़ाहिर। मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत कराचीअ में पाइपलाइन विछाइण जो कमु तमामु जल्द शुरू करण वारी आहे। सिंध में पब्लिक प्राइवेट भाईवारीअ तहत बहितरीन कमु थी रहियो आहे, जंहिंखे अॻिते वधायो वेंदो।

फैज़गंज वेझो वियो वाह खे 24 कलाकनि दौरान बियो घारो फसल पाणी हेठि अची वियो। गुज़िरियल ॾींहुं पयल घारे खां थोरो अॻियां RD78 वटि 20 फुट घारो पियो। घारे सबबि वण ऐं कमंद समेत ॿिया फसल पाणी हेठि अची विया। ॻोठाणनि पारां घारो बंदि करण जो मुतालबो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
4: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

Okay, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है सुपर वाइब प्रोडक्ट्स के नामों से ये सफर जो कि एक बजे तक जारी और सारी रहेगा. और सुपर वाइब अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले जिनका हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए 03-14-77-54-62. इसके अलावा हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03-70-258-321. तो ये होगा और इसके साथ सजी सुपर वाई के प्रोडक्ट जिनसे आप फार्मूलाज तैयार कर सकते हैं. सुपर वाई की पेट्रोलियम जेली आती है जी, इससे आप डिफरेंट दूसरे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बना सकते हैं. और वो कैसा बना सकते हैं, मतलब कि आप इससे डिफरेंट वेरिएंट्स बना सकते हैं, लाइक आप इससे टिंट बना सकते हैं और इसके अलावा आप इससे अपनी लिप बाम बना सकते हैं. इसके अलावा आप इसको वैसे भी एज अ लिप बाम यूज़ कर सकते हैं. और पेट्रोलियम जेली के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में. वो तमाम तो लोग जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र में ऐड कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र को मज़ीद और मॉइस्चराइज बनाने के लिए, ठीक है. इसके अलावा आप इसको अपने नेल्स पे जो है यूज़ कर सकते हैं, नेल्स पे लगा सकते हैं सर्दियों के मौसम में, सो डैट आपके नेल्स जो हैं टूटेंगे नहीं, स्ट्रांग रहेंगे और ड्राई नहीं होंगे. और इसके अलावा फटी हुई एड़ियों पे खास तौर पे फटी हुई एड़ियाँ जो कि सर्दियों के मौसम में हो जाती हैं, फटी हुई एड़ियों पे अप्लाई कर सकते हैं, पैरों पे लगा सकते हैं, क्योंकि खास कर जो है ना पैर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में. सर्दी आते साथ ही पैर का ड्राई होना लाजमी है, तो पैरों पर अप्लाई करें एड़ियों के साथ साथ, जो है ना आप लोग पूरे पाँव पर अप्लाई करें. और इसके अलावा लिप बाम आप इसको अप्लाई करें, आप इसको अपनी लैशेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लैशेस भी बहुत ज़्यादा जो है ना ड्राई रहती हैं, तो ड्राई लैशेस पे लगा सकते हैं, आईज पे लगा सकते हैं, आईज के अंदर नहीं आईज के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा आईब्रोज पे लगा सकते हैं. बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जिनकी आईब्रोज भी ड्राई हो जाती हैं, और जब वो आईब्रो पे कोई कलर यूज़ कर रही होती हैं तो ड्राइनेस नज़र आ रही होती है. तो अगर आप इसको लगा के अपना जो आईब्रो कलर है वो करेंगी तो फिर ये होगा कि आपकी जो आईब्रोज है वो भी ड्राई नहीं होंगी. तो देखिए कितने सारे फायदे हैं एक ही पेट्रोलियम जेली से. और ये जो पेट्रोलियम जेली है ना सुपर वाइट वालों की, ये बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स में आती है, अलग अलग लेमन में आती है, पिंक में आती है, कोकाओ बटर में आती है और दूसरे बहुत सारे फ्लेवर्स में आती है. तो आप इसको ले सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं.

फार्मूलाज कैसे तैयार कर सकते हैं सुपर वाइट वालों के प्रोडक्ट से, तो सुपर वाइट की कोई भी एक अदद ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है, हैंड्स एंड फीट्स का फार्मूला बताने जा रही हूँ तमाम के लोग जो कि हैंड्स एंड फीट्स फार्मूले के लिए परेशान हैं और चाहते हैं कि अच्छा सा कोई हैंड्स एंड फीट्स फार्मूला हमें मिल जाए. तो हैंड्स एंड फीट्स फार्मूले के लिए आप लोगों ने लेना है सुपर वाइट की कोई भी एक ब्यूटी क्रीम को. सुपर वाइट की कोई भी एक ब्यूटी क्रीम ले लें, उसमें उसकी बराबर की क्वांटिटी के मुताबिक पेट्रोलियम जली ऐड करें, ठीक है, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें. इसके रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं तो सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर भी इसमें ऐड कर लें. और ब्यूटी सीरम बूस्टर को ऐड करने के बाद ना होगा ये कि आपके जो हैंड्स एंड फीट फार्मूला के जो रिजल्ट है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे. और आप देखेंगे पहले ही 3 दिन में आपको वाजे फर्क नजर आएगा. जिन लोगों के पाँव बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, टैनिंग हो गई है, डार्क नकल्स हैं और उनको फेयर करना चाहते हैं और फेयर कॉम्प्लेक्शन से ऑब्सेस्ड हैं आप, लेकिन फेयर कॉम्प्लेक्शन है नहीं आपका और हैंड्स एंड फीट्स को भी फेयर करना चाहते हैं, सो आप ज़रूर कर सकते हैं और हैंड्स एंड फीट्स फार्मूला बना के, ठीक है, तो ज़रूर हैंड्स एंड फीट्स फार्मूला बनाएं. आज ही मार्केट जाएं और लेकर आएं सुपर वाइट के इन प्रोडक्ट्स को जिनसे आप फार्मूला तैयार कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर सखर और लारकाना वालों के लिए है, सो सखर और लारकाना वालों के लिए सुपर वाइट वाले डायल नहीं सुपर वाइट वाले जो है सुपर वाइट वालों का नंबर आप डायल करेंगे, उल्टा हो गया, खैर सखर और लारकाना वाले डायल करेंगे 03-14-77-544-62, ठीक है, ये डायल करेंगे. इसके अलावा हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03-70-25-68-321. एक बार फिर से रिपीट करूंगी, हैदराबाद वाले डायल करें, मुमताज़ हसन खान साहब से रब्ता करें, कहीं पे अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट सुपर वाइट के तो हेल्पलाइन नंबर है जो है हैदराबाद वालों के लिए 03-70-25-68-321. सक्कर और लाड़काना वाले डायल करेंगे 03-14-77-544-62. इसी के साथ हम आगे चलते हैं जी. और बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस आप लोगों के जो कि मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपके प्रोग्राम सुपर वाइट प्रोडक्ट जिंदगी गुलजार है, VIP है सिस्टर, एक रूना लेला का सॉन्ग प्ले कर दो, सो नाइस ऑफ यू. अच्छा जी, ओके जी. और टड़ी मीरवा से हमें सुन रहे हैं रजा राजपर, आसिम राजपर, हमीद राजपर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो. मोरो से हमें सुन रहे हैं मंठार अली चौहान और शमन मीराली का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, डेडिकेशन है अली गोहर गडाई और महबूब अली मीरजट को. ओके जी, थैंक यू. अब्दुल जी कैसर हमें कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. मुनव्वर अली कहते हैं लाजवाब उस्ताद. अच्छा, निज़ाम भट्टी कादरी हमें सुन रहे हैं, अब्दुल जी कैसर हमें सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं जी, थैंक यू सो मच. और अब्दुल जब्बार गबोल हमें सुन रहे हैं, मुगल उमरानी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच मुगल उमरानी. इसके अलावा कॉल्स भी आप लोगों की पिक करेंगे 03-00-11-34-88 के ऊपर. नेक्स्ट कॉलर, हेलो. ओके, हेलो. ओके जी, हमारी कॉल्स हैंग हो गई हैं, इसका हम करते हैं कोई हल. तब तक हम ऐसा करते हैं कि एक सॉन्ग प्ले करते हैं और सॉन्ग के साथ आगे चलते हैं. गाना प्ले करने जा रही हूँ, बाय कुक स्टूडियो, आसिम अज़र, माहिया, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं.

0: Crazy beautiful song और इसके साथ साथ 03 3111 3488 और नेक्स्ट कॉलर हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रहे हैं कहाँ से

है 03147544462 सखर और लाड़काना वालों के लिए. हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03702568321. इसी के साथ एक और सॉन्ग प्ले करते हैं जी, और साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, अक्सा कॉस्मेटिक्स.

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

Mukesh, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, मुझे कहते हैं आरजी साय, आपको और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और आप सुन रहे हैं सुबह वाई के टाउन से ये खूबसूरत सी जर्नी जो कि एक बजे तक जारी हो सारी रहने वाली है. और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉमेंट कर रहे हैं, कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जी एल आरकाना FM 88.8. वहाँ पे आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग आपको मिलती है जिंदगी गुजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है. और कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग को, और जहाँ जहाँ आप शेयर करना चाहें वहाँ वहाँ तक. और 888 पे भी आप लोग मुझे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं. इसके अलावा सुपर वाइट के हेल्पलाइन नंबर्स मैं आपको बताती जाऊँगी. सुपर वाइट का जो हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए, फ्रीक्वेंटली मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको डायल करें. और जहाँ जहाँ पे अवेलेबल नहीं है या फिर कोई मालूमात हासिल करनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हैं. तो सखर और लाड़काना वाले डायल कर सकते हैं 03147574462, 03147574462, ठीक है, ये डायल करेंगे. इसके अलावा सुपर वाइट प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाने के लिए ख़ास तौर पे हैदराबाद में आप लोग डायल कर सकते हैं मुमताज़ हसन खान का नंबर. मुमताज़ हसन खान का नंबर है 03702568323.

अलावा सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो सुपर वाइट के फॉर्मूलाज के बारे में भी मैंने आपको बताया. इसके अलावा सुपर वाइट का एक और फार्मूला आप लोग तैयार कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, आपने लेना है सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम को. ठीक है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम एक जार में आती है, और दूसरी आती है ऑयल फ्री एंटी एक्ने क्रीम. ठीक है, और ये ट्यूब की पैकेजिंग में आपको मिलती है. जो एक्ने क्रीम है वो आपको ट्यूब की पैकेजिंग में मिलेगी. तो ये दोनों क्रीम्स आप लोगों ने लेनी है. कौन सी? सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट की एंटी एक्ने ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम. तो ये वाली दोनों ब्यूटी क्रीम्स आप लोगों ने लेनी है, प्लस इसके साथ ब्यूटी सीरम बूस्टर लेना है सुपर वाइट वालों का. और ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने एक जार में निकाल लेनी है. ठीक है, और जार में निकाल के अच्छे तरीके से मिक्स करना है. इतना मिक्स करना है कि तीनों क्रीम्स और जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है वो आपस में अच्छे तरीके से यकजा हो जाए. और जब ये यकजा हो जाए तो आप इनको स्टोर कर लें. स्टोर करने के बाद रात को सोने से पहले फेस को वॉश करें सुपर वाइट फेस वॉश से, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से. ठीक है, सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से फेस को वॉश करें. और फिर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर जो कि आपने बनाया है. ठीक है, रात को सोने से पहले अच्छे तरीके से अप्लाई करें, सुबह फिर से अप्लाई करें, नहीं सुबह फिर से अप्लाई नहीं करना, सुबह फेस को वॉश करना है. ठीक है, रात को सोने से पहले लगाना है और ओवरनाइट लगाना है, और पहले ही 3 दिन में आप वाजे फ़र्क देखेंगे. अच्छा, फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि जो डाउन कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर हो जाएगा, या जो पिंपल्स का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा, या जो एक्ने का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा. इसके अलावा पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी. और अगर आपकी स्किन बे रौनक है, बेजान है और अच्छी नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से, तो आप इसको जो है इस्तेमाल करके अपनी डैमेज स्किन को भी रिपेयर कर सकते हैं. एक बहुत ही बेहतरीन और सेफ फार्मूला. बहुत सारे फार्मूलाज आप यूज़ करते हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन सुपर वाइट वाले अपनी ही प्रोडक्ट से फार्मूलाज बनाने की जो है ट्रिक्स बताते हैं, और कौन से फार्मूलाज किस चीज़ के लिए बेस्ट हैं वो भी बताते हैं. तो ऑयल फ्री जो क्रीम है, और जो एंटी एक्ने ऑयल फ्री क्रीम है, और जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है, ये तीनों चीज़ें जो हैं उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जिनकी स्किन टाइप ऑयली है और वो ये सारे फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, लाइक चिट्टा गोरा रंग और एक्ने को ख़त्म करना चाहते हैं, एक्ने के निशानात को ख़त्म करना चाहते हैं, पिंपल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये सारे इशू ख़त्म होंगे और जो आपकी डिज़ायर रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी होगी. अच्छा, इसी के साथ हम चेंज करेंगे गाने को और कॉल्स लेंगे आप लोगों की. एंड हर कम्स द स्ट्रीम विद मी

0: ओके जी कॉलर लेते हैं, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हाफिज लखनी भाई, कल भी कॉल लगाई थी मैंने, कहा है ना डेली बेसिस पे सेम कॉलर्स आर नॉट अलाउड. ठीक है,
1: आपका
0: नहीं शौक से सुने लेकिन कॉल जो है ना दो दिन बाद लगाए. ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मजबूरन मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी, तो जब मैंने आपको रूल बता दिया है तो उसको फॉलो करें और डेली बेसिस पे कॉल ना लगाएं. कल भी जब आपने कॉल की तो मैंने बजाय ड्रॉप करने के मैंने आपसे गाना भी सुना, मैंने आपका गाना भी चलाया, तो इस चीज का खास ख्याल रखें आप लोग भी. 03000113488 नेक्स्ट कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह.
0: जी कौन कहां से?
2: आप से असदुल्लाह कांडियो.
0: ओके जी, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: दूसरा मतबा कॉल कीजिए.
0: ओके, प्रोग्राम सुनते हैं कौन से?
2: और प्रोग्राम में सुनता हूँ रोजाना, और यार मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो ये यहाँ जो स्टेशन आए आपकी ये चैनल आई FM 88, ये नहीं चल रहा यहाँ
0: पे,
2: सुनने में नहीं आता.
0: अच्छा, कहाँ नहीं चल रहा?
2: ये लाशारी 16 किलोमीटर दूर है मेरे से लाड़काना.
0: अच्छा, लाड़काना से दूर है?
2: हाँ, 16 किलो.
0: चलिए ठीक है जी, मैं बिल्कुल आपकी जो कॉल भी ड्रॉप हो गई भाई की, खैर आपकी जो कंप्लेन है हमने नोट कर लिए जी, थैंक यू सो मच. आप लोग हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी जो नशरियात हैं वो नशर नहीं हो पा रही हैं. थैंक यू. असल मैसेजेस मुझे रिसीव होते जा रहे हैं आप लोगों के, गोल गुल हसन शर से हैदर बख्शर हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा अच्छा आर जी सुपरवाइज के प्रोडक्ट तो सारे अच्छे हैं, आई डोंट नो मैंने तो यूज़ नहीं किए हैं, सखर में एक फैमिली में यूज़ होते हैं, रिजल्ट अच्छा है. अच्छा, कौन सी फैमिली है वो? तो मैं तो बहुत सारी फैमिलीज में यूज़ हो रहे होंगे खास तौर पे प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद. और इसके अलावा जी पोइट्री लिखी है जनाब, बहते अश्कों की जबान नहीं होती, लफ्ज़ों में मोहब्बत बयां नहीं होती, मिले जो प्यार तो कदर कर लेना, मोहब्बत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती. वाह वाह वाह, क्या बात है. और इसी के साथ हम आगे चलेंगे जी, और कमेंट भी आप लोगों के बहुत सारे रिसीव होते जा रहे हैं.

ओके जी, इसी के साथ आगे चलते हैं हम. बाय द वे, जो सॉन्ग इस वक्त ऑन ईयर है स्टे विद मी, ये एक जो वायरल ट्रेंड है AI वीडियो का, जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल और मतलब कि फेमस चल रहा है, तो उसमें ये जो गाना है ना, ये बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा चल रहा होता है. और मैंने बहुत कोशिश की परसों इसको ढूंढने की, और मैंने ढूंढ भी लिया, और सुनने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको अपना बैकग्राउंड बना लिया.

ओके जी, इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं. एंड नेक्स्ट सॉन्ग मेरे पास मौजूद है OST सॉन्ग. इसको सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स, जिनका हेल्पलाइन नंबर है 03147544462. हैदराबाद वालों के लिए 03702568321.

योगी जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ हम चलेंगे आगे और प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है. सो प्रोग्राम को रैप अप करेंगे इंशाल्लाह. मेरी आपसे चिटचैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम, सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम, टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम और ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं आपकी स्किन को. सो स्किन को खूबसूरत बनाने का पूरा पूरा हक आपको हासिल है. तो इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्यूटी पे कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स वालों के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहें. हेल्पलाइन नंबर नोटिस कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए 0314 77 544 62. हैदराबाद वाले डायल करें 0370 256 8321. इसी के साथ फाइनली मैं लूंगी आपसे इजाजत. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा अल्लाह.

0: साइड खुदकुशी लगी रही आ छो त जी तरीके से गनशॉट थो जाल मुड़स के उन बार नशे वशे दिनी वही आ प्लस में सुसाइड नोट जो मिलन याद रहे कि सुसाइड नोट हैंड रिटन नोट है वो टाइप रिटन नोट या प्रिंटेड नोट ना है जैसे घर मालिकान आया है तो जोर से खड़का अथन नेठ दरवाजो तोड़ो अथन बॉडी जो पोस्टमार्टम हाँ थी रो है हर एंगल का दिसंदी जी हकीकत दोस्तों शेयर कर
1: मलीर के फलकनाज सोसाइटी के घर में एक ही कुटुंब के पंज भातिन जा लाश फोतन में घर धणी शाहजेब संदस जाल सबा भेण शुमायला मासूम धीर आर्या आयजन शामिल पुलिस जो चवण है त बिन्हीं बारन ए नारी शुमायला के जहर दई भी मारण बाद घर धणी शाहजेब जाल के कतल करण बाद आपघात कयो आए घर जो दरवाजो भी अंदरा बंद हो इलाके वासन बुधायो आए त शाहजेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो आई जी सिंध वाक्य जो नोटिस वठंदे डी आई जी ईस्ट का रिपोर्ट तलब करे वरती आए
2: मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जो समूरी बोगियों पटड़ी तां लही वयूं छह मुसाफिर फोत थी विया केतरा ही जख्मी थी पिया रहमान बाबा ट्रेन कराची का पिशावर वेंदे मुल्तान वट हादसे जो शिकार थी आ है ट्रेन में 500 का 600 मुसाफिर सवार हुआ रेलवेज पारा हादसे में छह मुसाफिरन के फोत थियण की तस्दीक थी है ट्रेक बहाल करण जो कोशिशों जारी आहिन सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा ट्रेन हादसे में जानी नुकसान ते दुख जो इजहार कयो वियो आहे जख्मियुनि खे बेहतरीन तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत कई आहे
1: केपीए में दहशतगर्दी के वाक्य में गणती जोगी वाद थी खैबर पख्तूनख्वा में सदर आइन तहत एमरजेंसी लगाई कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ चयो आहे त आइन रियासती निज़ाम ऐं मुख़्तलिफ़ हालतुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तरीक़ेकार जो तइन करे थो शहरनि जे जाननि जो तहफ़ुज़ करणु हुकूमत जी ज़िमेवारी आहे वफ़ाकी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान ऐं हुकमरानी जी सूरत हाल घणी ख़राब थी चुकी हुई वफ़ाकी हुकूमत जी का बि सियासी एजंडा नाहे
2: सैनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा इजलास अॼु थींदा पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पारां इजलासनि खां पहिरियां पार्लियामेंटी पार्टियुनि जा इजलास सॾायल पीटीआई जे पार्लियामेंटी पार्टी बि अॼु गॾिजाणी कंदी पीपी ऐं नून लीग पार्लियामेंट्रीज़ खे केपी जी सूरतहाल ऐं खयल क़दमनि बाबति एतमाद में वठंदी पीटीआई पारां एतिजाज जी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी
1: वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां चीनी शहर वान में जदीद टेक्नोलॉजीअ वारनि मुख़्तलिफ़ मर्कज़नि जो दौरो सिंध हुकूमत जो मसनूई निज़ानत डेटा सेंटर ऐं टेक्निकल तरबियत वारनि शोबनि में सहकार वधाइण जो फ़ैसिलो स्मार्ट गवर्नेंस ऐं मसनूई ज़हानत खे हथी ॾियण लाइ चीन सां सहकार जी तजवीज़ मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत रुगो टेक्नोलॉजीअ जी ख़रीदारी नथी चाहे मुकमल तरबियत ऐं सहकार जी ख़्वाहिशमंद आहे डिजिटल मईशत लाइ जदीद कंपनियुनि ताईं रसाई ज़रूरी आहे
2: खैरपुर जे शाहलती यूनिवर्सिटीअ में दाख़िलान लाइ एंट्री टेस्ट 4000 खां वधीक उमेदवारनि जी शिरकत यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया एंट्री टेस्ट दौरान कापी रोकण में नाकाम पाबंदी बावजूद शागिर्द टेस्ट दौरान मोबाइल फोन जो सरेआम इस्तेमालु कंदा रहिया सिक्योरिटी इंतिज़ाम सख़्तु रहिया
1: मेयर बरसा इंडस हाईवे तां अणॼातल शख़्स जो चिचिरियल लाश हथ इस्पताल मुंतकिल सुञाणप न थी सघी
2: हैदराबाद में मदीना टाउन वासी औरतुनि जो पुलिस जे मुबैना ज़ब्तनि ख़िलाफ़ एहतजाज घरनि ते चढ़ाई करे 11 ॼणनि खे गिरफ़्तार करण जो इल्ज़ाम औरतुनि मौजूदु पुलिस बिना कंहिं जवाज़े घर ते चढ़ाई करे महिमान थी आयल 11 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वई आहे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे
1: ऐं फेसगंज वेझो वियो आहे 24 कलाकनि दौरान ॿियो घारो फसल पाणी हेठि गुज़िरियल ॾींहुं पयल घारे खां थोरो अॻियां RD 78 वटि 20 फुट घारो पियो घारे सबबि वण ऐं कमंद समेत ॿिया फसल पाणी हेठि अची विया ॻोठणनि पारां घारो बंदि करण जो मुतालबो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
2: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
4: Super White!
5: Pakistan ki shaan, Wadi-e-Mehran. Mehran ki pehchan. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है। तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजय दत्त तमाम खूब सदमा सुमय सुने समातन की मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। के समंदर जहाँ की बारिश फिलासुल खजानों के साथ हुआ है, पल से पल तक से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से दर्द तक से खुशी तक दर्द दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मांतली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह से आपकी खूबसूरती के लिए यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आपके चेहरे पर वर्क करेंगे, किस तरह से आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने के साथ साथ आपको हसीन खूबसूरत और दिलकश बना देंगे। तो जनाब यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और व्हाइटिश के प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में आप लोगों को इस पूरे प्रोग्राम में बताया जाएगा। ओके जी, सुनने वाली तमाम समातों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, अपने हाल चाल बताते जाइए। सुनिए लिसनर्स अंत के हालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करें होंगे, तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करेंगे और आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स से अपनी खूबसूरती में जो है ना 4 चांद लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन जब आप कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट परचेज करें जो कि भाई दावा कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट आपको अच्छे से रिजल्ट देने वाला है, या जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता, तो जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें या जो भी प्रोडक्ट आपको ऐसा होता है कि भाई ये हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्योंकि कई मरतबा तो आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव भी हो जाती है और सेंसिटिव स्किन के ऊपर आप समझ नहीं पाते कि कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो आप लोगों को इस प्यारे प्रोग्राम के अंदर बताया जाता है उन तमाम दर बातों के बारे में जो कि बातें आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है। आप लोगों का जब खूबसूरती के मामले में थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि भाई दिल खराब हो चुका है, कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो स्किन खराब हो जाती है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके लिए भी आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा करने के साथ साथ अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ढेरों ढेर आप लोगों के साथ बातें करेंगे। ऐसे के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 हल्की स्माइल लाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को आगे से प्रोग्राम करवाएंगे। आगे से प्रोग्राम करते हैं जी आज एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ, बहुत प्यारा कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है, कसीदा सुनते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है और बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

0: शेर जमान अहमदानी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। ये मौजूद है, गुड आफ्टरनून, हेलो आरजे सदरा मुस्कान जी, आप कैसी हैं? योर शो इज नाइस, वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके जी, आपको भी वेलकम हो गया। अली रसल लगारी हमें सुन रही है, गोट जाम खान लगारी से सिस्टर सिदरा मुस्कान जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। तमा गानो लिखियो ओके हो गया जी, और तमा डेडिकेशन सेंड कई आहे अजहर लगारी, आकिब लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, सिदरा सिस्टर सिदरा जैसे सॉन्ग है ना वैसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट है सिस्टर, और सॉन्ग जरूर प्ले करना। जी जी भा, मां कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंद जो गानो हलाए वठंदासीं। ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो आहे, तॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहा केतिरा सुठा रिज़ल्ट तव्हांखे ॾिए पई। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि ट्राए करे ॾिसणो आहे। उन खां अलावा इहे हमारे साथ ही सिदरा, आपका शो शिकारपुर में नहीं चलता है क्यों? मैं दो दिन वहां था, आज लाड़काना में हूँ, फिदा हुसैन मक्सी और सलाम दो अद्दो खान मक्सी और उसरा बेबी को। चलें जी, सबको सलाम हो गया, लेकिन शिकारपुर में क्यों नहीं चलता? सखर वाला FM अगर आप ज्वाइन करते, सखर ट्यून करते, तो आपको सखर से हमारा प्रोग्राम जो ना शिकारपुर में आप इजीली सुन सकते थे। नहीं तो ये फिर फेसबुक वाला ऑप्शन तो है ही है कि आप फेसबुक पर कहीं पर भी हमारा प्रोग्राम आराम से सुन सकते हैं। और मुलाजिम भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम कहते हैं मुलाजिम भाई आपको भी। और महर इरफान सियाल साहब हमें प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजी, ग्रेट होस्टिंग, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी ये मोहब्बतें हैं। और हमारे साथ जी शहर शोरान बलोचिस्तान से मोहम्मद वसीम कहते हैं प्रोग्राम आपका पसंद है, बहुत शुक्रिया जी, हिदायतुल्लाह आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं मुस्कान ये मंजूर सिकरानी का गाना है, ओके जी लगाते हैं आपके गाने। और मोहम्मद सफर तो न्यू हमारे साथ ही, कहते हाय सिदरा 2021, अच्छा 2021 से सुना, उसके बाद जो है ना 2026 में आपने मुझे ज्वाइन किया, कहते हैं आपका शो में आया हूँ, वेलकम तो करो ना। जी जी बिल्कुल, आपको वेलकम कहते हैं मोहम्मद सफर तो न्यू। और आपको वेलकम के साथ साथ ये भी बताते हैं कि अब आप जो है ना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा लाने वाले हैं। चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, तो चाहे आप मर्द हज़रात हैं, चाहे आप ख़वातीन हैं, आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास क्वालिटीज हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना हर स्किन के ऊपर सूट करती है, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बताएंगे, जितने भी नए लोग हमें सुन रहे हैं उनका जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और गदा हुसैन भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, तमाम जी सिंधी शायरी बाबा, सिंधी शायरी थोड़ो मां गलत रीड करे वेंदी आहे, कहते हैं हाय सिदरा आप कैसी हो, मैं भी आ गया, अब किसका इंतजार है, बस अब गाड़ी स्टार्ट करो, क्यों हिला दिया ना। गदा हुसैन मला, मोहम्मद बख्श मला, नूरदीन अबड़ो और शाका अबड़ो विलेज, आंदल खान अबड़ो, आंदल खान मला से आप हमारा शो सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने हिला दिया हमें और गाड़ी को हमने किक मार के स्टार्ट कर दिया। मोहम्मद सलमान कुमर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते मुझे गाना सुना दें, ओके आई ट्राई। जैन अली कहते हैं कि हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, ओके वासु भाई आ चुके, वालेकुम अस्सलाम वासु भाई। ऐसे ही आप सब लोग हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, और आप सारे लोग जो है ना हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे तो ये वाला फायदा हो जाता है कि बाकी बहुत सारे लोगों को हम अपना पैगाम पहुंचा पाते हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जितने प्रोडक्ट्स है ना, चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या डी स्किन का फेस वॉश लगा रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के ऊपर जो है बड़ा बेहतरीन सा निखार लाएंगे, और आपकी खूबसूरती के हिसाब से ही इन्हें तैयार किया गया है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है, चाहे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करते जाइए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और मुझे बताइए कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप भी खूबसूरत, हसीन और प्यारे प्यारे बन चुके हैं। टाइम हुआ है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, और जरा यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खिबसे की बनी है आवाज,
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल

0: स्टडीज में इन सेशन लाइ दाखिलाऊं जारी आहिनि। चार सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, पंज सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, ॿिनि सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, ख़ासि सहूलियतूं, स्कॉलरशिप्स मौजूद, ॿिनि सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ़्ता आहे। यादि रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642 ऐं 03108166111।
1: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: यार मां छा कयां, किथे वञां, घर में वेठो आहियां पर ठीक ही ना आहियां, शायद मुझे जिंदगी।
1: अव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुनजी नमी खे ब्लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: ढाडो सुठो
4: GAFM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज़।

ही कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि ये गाने ऐसे गाने हैं हम जितने भी सुन ले हमारा दिल ही नहीं भरता. बहुत प्यारा बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है. और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. अच्छा, यहाँ पे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, तो आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए जिसमें आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है. तो जो लोग ऐसा होता है ना कि क्रीम ही नहीं लगा पाते हैं, चले आप ऐसा वाला सीन है कि चले आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है. अगर आप फेस वॉश ट्राई करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश, ये सब लोगों के लिए है, ऑल स्किन टाइप के लिए. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है.

सुपरनोवा में हम, लेकिन आपने जरा डिस्कन ब्यूटी क्रीम लगा कर उसकी खूबसूरती में खो जाना है। और किशोर भाई कहते कि मुझे बचपन में फनी सजा तो न मिली हुई, पर यादगार सजा, खतरनाक सजा मिली, जो मूसा को तालक भी न हुए। अली ई भी थी दो हो वैसे। मोहम्मद जमान कहते हैं चापे अबू, लिखते हैं कि अबू कमरे में बंद करने की धमकियां देते थे और तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा, जैसे ही कमरे में बंद करता था तो हम ब्रो आपस में मुर्गा बनने की अच्छा वो कोशिश करते थे। और टॉपिक अच्छा कहते हैं अच्छा प्रैक्टिस करते थे ताकि अबू अगर मुर्गा बनाए तो फिर हमें कोई तकलीफ ना हो। क्या बात है। गदा हुसैन लिखते हैं कि जी सिद्रा आज कुछ भी हो जाए लेकिन आपने गाना मेरा लगाना है। जी बिल्कुल आज आपका गाना लगा देंगे। इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं आप, मुझे बताएं दी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया या अभी आपके जो ये दोस्त हैं मोहम्मद बख्श मल्ला भाई उनकी दुकान पर अवेलेबल नहीं हुए। और कहते हैं कि नूरदीन अबरो शाका अबरो विलेज आंदल खान मला से आप हमारे साथ मौजूद हैं। ओके हो गया जी। फकीर साहिब शेख लारकाना से हमें सुन रहे हैं, वेलकम। निसार मोलाई हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप हमारे पुराने लिसनर हैं। ओके जी, सपनों से बाहर आना तो चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं पाते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे सपनों की जो दुनिया है ना वो बहुत सुंदर है और ये जो बाहर की दुनिया है ये बड़ी खतरनाक है। तो ऐसा लगता है हमें कि भाई हमें सपनों की दुनिया में ही रहना चाहिए। और समाटो गोपाल कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम डियर सिद्रा केसिया, कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस वॉइस, थैंक यू, वेलकम। आप बताएं दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज किए कंबर सिटी में तो मिल रहे हैं, तो आप कब ले रहे हैं मुझे बताइएगा। गाना सुनना चाहते हैं, ओके जी सुना देंगे। अच्छा निसार मोलाई भाई आपने इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं, ठीक है जी, आप हमारे बड़े पुराने लिसनर हैं, 2013 से मेरा शो सुनते हैं, ओके, लेकिन मैं तो तब आई नहीं थी एफएम पे। वेल आपको वेलकम कहते हैं। आप दी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा, ठीक है निसार भाई।

पोचे मजा कबाब पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए पो तमा लगाई खून बुधाईंदा हलो मुखी मीर ममताज बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं ब्यूटी शो आपका अच्छा है स्किन केयर करनी चाहिए नाइस है वोट दाद मोहम्मद बिरोही मदेजी से मीर मोहम्मद बिरोही अशफाक अली बिरोही सजाद अली बिरोही भाइयों को वेलकम कहते हैं वासा भाई कहते अदी सिडो जवाब एक दफो अबे सजा दिनी हुई बदी छड़ियो हुए पूरो कलाक अदी आई मामा ही चाचा कन्ना गोशी कराइंदा हुआ अच्छा ये तो वैसे आम सी सजाएं हैं मुझे लग रहा है कोई ऐसी सजा बताएं जो आपको मिली अपने बचपन में आपको लगता है कि ये थोड़ी वक्री सजा है भाई अच्छा निसार भाई हमारे घुनी वाले लिसनर थे अब उन्होंने अपनी खामोशियों को तोड़ लिया है अच्छा किया है आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं थैंक यू बस आप एक काम कीजिएगा आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है तो वो भी आप परचेज कीजिएगा दोनों चीजें साथ में लगाएं ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे दोदा हाली हमें सुन रहे हैं हेलो भाई अच्छा गदा भाई कहते गदी सिद्रा देख लो आपका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन अभी मोरो वालों ने आपका प्रोग्राम बंद कर दिया है अब आपका प्रोग्राम कैसे सुने मोरो वालों ये क्या है पहली शिकायत आपकी मुझे मिली है मोरो वालों की तो मैं तारीफ करती हूँ मोरो वाले जो हमारा अच्छे से प्रोग्राम कनेक्ट करते हैं भाई तवाजी शिकायत है न मिलन गुर्जे सही प्रोग्राम कनेक्ट कर अदा मोरो वालो अच्छा रमजान भाई भी आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम रमजान भाई थोड़े शॉर्ट शॉर्ट से कमेंट्स लिखा करें इतनी लंबी चौड़ी शायरियां भेज देते शायरियां जो है ना वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में भेज दिया करें ठीक है

0: अरे किशोर भाई कहते हैं कि अदा शमन जो गानो बुधराए फकीरानी तबियत जो मुखे दिल बर मिली वियो आ ओके डेडिकेट टू माय स्वीट वाइफ छा गाल कजे भाभी के डेडिकेट वास साई वा वास भाई कहते अदी नंडपण में ना मा वडो शरारती हुस घर वारन सा कावड़ कंदो हुस वडो घर जो ज्ञान कंदो हुस आईली वो कुटकी भी जाम खाइंदा हुंदा छड़े त कोने दींदा हुंदा घर वारा अच्छा दाऊद अली पिताफी भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कराची से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम कहते हैं अच्छा दाऊद भाई लिखते हैं कि इस मतलब की दुनिया में तो मोहब्बत को मत ढूंढ खुद को बर्बाद करने की वजह मत ढूंढ यहाँ पर तो हर कोई अपने आप को वफादार बनाए बैठा है दाऊद तो जो खुद को बेवफा बनाने की वजह
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.

मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जो समूरियूं बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं। छह मुसाफिर फौत थी विया, केतिरा ई जख्मी थी विया। रहमान बाबा ट्रेन कराची खां पिशावर वेंदे मुल्तान वटि हादसे जो शिकार थी। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफिर सवार हुआ। रेलवेज पारां हादसे में छह मुसाफिरनि जे फौत थियण जी तसदीक। ट्रेक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते डुख जो इज़हार कयो वियो। ज़ख़्मीनि खे बहितरीन तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत कई।

0: सुइसाइड खुदकुशी लगी रही है छो त जे तरीके से गनशॉट थियो आ जाल मुड़स के उन्हीं बार शावाशे दिनी वही आ प्लस में सुइसाइड नोट जो मिलन आई याद रहे कि सुइसाइड नोट हैंड रिटन नोट आए तो टाइप रिटन नोट या प्रिंटेड नोट ना आए जैसे घर मालिकान आया है वो जोर से खड़का अथन नेठ दरवाजो तोड़ो अथन बॉडी जो पोस्टमार्टम हाने थी रो है हर एंगल का दिसनासी जेके हकीकत में तुम दोस्त शेयर कर
1: मलीर के फलकनाज सोसाइटी के घर में एक ही कुटुंब के पंज भातिन जा लाश थाया फोतिन के घर धनी शाह जेब जाल संदस सबा भेण शुमायला मासूम धीर आरिया आयजन शामिल आन पुलिस जो चवण है बिन्हीं बारन नारी शुमायला के जहर दई मारण बाद घर धनी शाह जेब जाल के कतल करण बाद आपघात किया है घर जो दरवाजो भी अंदर बंद हो इलाके वासिन बुधाया है शाह जेब मुआशी तौर से परेशान रहो हो आई जी सिंध वाके जो नोटिस वे डी आई जी ईस्ट का रिपोर्ट तलब करे वरती

खैरपुर के शाह लतीफ यूनिवर्सिटी में दाखिला ऑनलाइन एंट्री टेस्ट 4000 का उम्मीदवार की शिरकत यूनिवर्सिटी इंतजामिया एंट्री टेस्ट दौरान कापी रोकने में नाकाम पाबंदी बावजूद शागिर्द टेस्ट दौरान मोबाइल फोन जो सरेआम इस्तेमाल कंदा रहा सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त रहा। मेहर भरसा इंडस हाईवे ताण जातल शख्स जो चिचरे लाश हथायो है अस्पताल मुंतकिल है सुणप न थी सकी है। कराची में सीटीडी ए हसास इदारन की गडियल कार्रवाई चार शकी दहशतगर्द गिरफ्तार सीटीडी तर्जुमान मौजूद शहर के मुख्य इलाक में सीटीडी ए वफाकी हसास सिविल इदारे की गडियल कार्रवाई क्यों कार्रवाई दौरान पाबंदी मरल तंजीमन के चार दहशतगर्दन के गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दहशतगर्दन में गुलाब यासीन आफ्ताब अहमद ए शोएब समेत चार जणा शामिल हैं। दहशतगर्द हसास हंदन कानून लागू कदड़ इदारन से हमल की रिथाबंदी कर रहा हुआ। खैरपुर में बदमनी खिलाफ किंगे तालके के वी का स्कूलन के उस्तादन जो धरणो उस्तादन वधंदड़ बदमनी खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों करे शाह हुसैन बायपास वट धरणो आयो मुजाहरीन मूजिब बदमनी चोट चढ़ियल है उस्तादन का फुलुट के वाक्य सबब सख्त परेशान आयो बदमनी ते जब्तो आंदो वे। हैदराबाद में मदीना टाउन वासी औरतन जो पुलिस के मुबैन जातियों खिलाफ एहतजाज घर से चढ़ाई करे नौजवान के गिरफ्तार करने जो इल्जाम औरतन मूजिब पुलिस बिना जवाब के घर से चढ़ाई करे नौजवान के खंभे गुम कर छो है। गिरफ्तार नौजवान के आजाद करे जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कर इंसाफ कयो वञे। मीरपुर खास भरसा रोड से लगल पेट्रोल यूनिट्स के बाहे लगी वही टे जणा सड़ी जख्मी थी वह टंडो आदम नाके वट पेट्रोल के बिन यूनिट्स के बाहे लगी बाहे विसायण की कोशिश दौरान फायर ब्रिगेड अमले के बिन मुलाजमन समेत टे जणा सड़ी जख्मी थे जख्मी अस्पताल मुंतकिल किया फायर ब्रिगेड कुछ देर की मेहनत बाद बाहे तेज जब्तो आंदो।

सिंध के मुख्तलिफ शहर में स्कूल अंदर सहूलत उस्ताद की कोर्ट खिलाफ मुजाहरा रियासी भरसा गोठ विसरो के प्राइमरी स्कूल में सहूलत की कोर्ट खिलाफ शागिर्द एहतजाज किया। खोड़ा में गोठाणन गोठ जो प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर परे मुंतकिल करने खिलाफ एहतजाज किया वो डेरो लाल स्टेशन भरसा गोठ मोरिनो मीरजत के बॉयज प्राइमरी स्कूल में उस्ताद मुकर्र न थे खिलाफ एहतजाज किया वो नगर पार्कर में शागिर्दन गोठाणन प्राइमरी स्कूल की बंदिश खिलाफ एहतजाज किया।

0: फेसगंज वेझो विहोवा खे 24 कलाकनि दौरान बियो गारो फसल पाणी हेठि अची वियो। गुज़िरियल ॾींहुं पयल गारे खां थोरो अॻियां आर्ट 78 वटि 20 फुट गारो पियो। गारे सबबु पोणनि ऐं कमनि समेत ॿिया फसल पाणी हेठि अची विया आहिनि। ॻोठाणनि पारां गारो बंदि करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
7: सही लगे थी ऐं जे कुछ भी खावा थो त हजम ई नथो थे, पेट फूकजी वञे थो, हथ पेर सुन थी वञनि था, ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी, कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
8: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिक ई मसलो आहे।
7: हिक? इहो कीअं?
8: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे। छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली, नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया, लेकिन अब आप लोगों को बताया जाएगा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को जो बताने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आप लोगों के लिए कितने सारे फायदे छुपे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब कि यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप उन्हीं सेम नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं जो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताए जाते हैं। तो नंबर सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये बात है कि अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनको अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप रब्ता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि भाई व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स कितने सारे हैं। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है जनाब, उसके अलावा व्हाइट एश ब्यूटी सोप है, व्हाइट एश का फेस वॉश है, और साथ साथ व्हाइट एश की डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है। जी बिल्कुल, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, उसके अलावा व्हाइट एश लवली क्रीम है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तमाम प्रोडक्ट जो है ना अपना अपना काम करते हैं। मतलब ऐसे कि अगर आपको चाहिए कोई ऐसी नाइट क्रीम जो कि भाई आप लोगों को रिफ्रेश बना दे, आपकी स्किन को अच्छा सा लुक दे दे, आपके चेहरे पर जो है ना व्हाइटनिंग ला दे, तो आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि एवोकाडो और मिल्क से तैयार की गई है, अगर आपको चाहिए कोई लाइट सा प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करें अपनी हर स्किन टोन के ऊपर, तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी सोप इस्तेमाल करने वाली समाते हैं, साबुन लगाना आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए व्हाइट एश का ब्यूटी सोप भी मौजूद है। क्योंकि व्हाइट एश का ब्यूटी सोप जो है ना, ये भाई व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आपको व्हाइट एश का ब्यूटी सोप भी परचेज करना चाहिए। वैसे ये आप लोगों के लिए एक ऐसा सोप हो सकता है जैसे आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं, सब लोग लगा सकते हैं। मोस्टली जैसे आप घर में कोई भी साबुन का यूज करते हैं तो सारे लोग ही व्हाइट एश का ब्यूटी सोप जो है ना लगा सकते हैं। ये बहुत ही मिल्की सा सोप है, इतना कमाल का आपकी स्किन को बना देगा, इतना सॉफ्ट सा, ग्लोइंग सा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको व्हाइट एश का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो व्हाइट एश का जो फेस वॉश है ना, उसकी अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तैयार रखा गया है। वैसे तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्रीमी सा लुक चाहिए और मिल्की सा लुक चाहिए तो आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम और व्हाइट एश का जो है ना वो साबुन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों के चेहरे पर विटामिन सी की कमी है, या फिर आपके चेहरे पर आपको चाहिए कि भाई, या ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को ऐसा क्रेज भी होता है कि हम विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स लगाएंगे, तो आपके लिए व्हाइट एश का विटामिन सी फेस वॉश मौजूद है। और व्हाइट एश का जो विटामिन सी फेस वॉश है ना, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, और साथ साथ ये बड़ा क्रीमी सा फेस वॉश है, तो इसका इस्तेमाल भी आप सब लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं, कहीं जाना, यानी कि ऐसा होता है कुछ लोगों की घूमने फिरने की बड़ी आदत होती है, वो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, तो अगर आपको ट्रैवल करने का बड़ा शौक है तो आप व्हाइट एश का जो फेस वॉश है ना, ये आप अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा जो है इसको आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। बाकी अगर यहाँ पर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब की बात आती है, तो जिन लोगों के चेहरे पर बड़े एक्नी होते हैं ना, एक्नी को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है आपने बड़ी सी ट्रीटमेंट करवा रखी होती है, लेकिन ट्रीटमेंट से ऐसा होता है, मुझे लगता है कि फायदा जो है ना आपको थोड़ा सा वक्ती तौर पर मिल ही जाता है, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। इतने प्रोडक्ट जो ना बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स के जब चक्कर लगाते हैं तो आपको पता लग जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए और कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपकी एक्नी की ट्रीटमेंट कर सके, एक्नी से फाइट कर सके, तो आपके लिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है। अच्छा हाँ, ये जो है ना, आप लोगों को नाम जरा याद करना है इसका, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाइट एश का ये जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है ना, इसका नाम आपको आना चाहिए। एक तो ये है कि भाई ये व्हाइट एश का आप एक्नी ट्यूब कह सकते हैं, दूसरा ये कि आपको ये नाम होना चाहिए क्योंकि ये आसान है मुझे लगता है नाम के, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब। ये डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप लेंगे तो आपको बिल्कुल दुकानदार दे देंगे। और ये जनाब बहुत ही कमाल का ट्यूब है, ये बिल्कुल ये ट्यूब है, अगर आप कोई अच्छा सा एक्नी ट्यूब लेना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे
डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, तो आपके चेहरे पर जितनी भी एक्नी है या फिर जो बैक्टीरिया आपके फेस पर जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से एक्नी बनते हैं, उनसे आपके चेहरे पर छुटकारा हो जाएगा। आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो खत्म हो जाएगा। एक्नी मार्क्स हैं या फिर ब्लैक पॉट्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ये तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी। आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, क्लियर हो जाती है और बेदाग हो जाती है, और आपके चेहरे पर जो है ना सारे एक्नी का खात्मा हो जाता है। उनका अलावा जेको असां वटि व्हाइट एसी लवली क्रीम भी मौजूद है। मां तव्हांखे आराम आराम सां सभिनी प्रोडक्ट्स जे बारे ॿुधाई न, पर खोर सारा ॾींहं थी विया न त तव्हां खां थोरो विसरी वियो हूंदो। इन लाइ मां तव्हांखे सभिनी प्रोडक्ट जो डिस्क्लेमर ॾींदी अचां थी त कहिड़ा कहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि, उन्हनि खे तव्हां कीअं कीअं लॻाए सघो था। बाक़ी हा डिटेल्स तव्हां सां बिल्कुलु शेयर कंदासीं। अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा व्हाइट एस जा प्रोडक्ट त तव्हांखे ख़बर हुजे जेको बि प्रोडक्ट तव्हां लॻायो था उनजो रिज़ल्ट छा मिलंदो तव्हांखे, उहो तव्हां छो लॻायो पिया। सो अगरि व्हाइट एस जी लवली क्रीम जी असां ॻाल्हि कयूं था त व्हाइट एस जो जेको लवली फार्मूलो आहे न, ही ॾाढो ज़बरदस्त ऐं कमाल जो फार्मूलो आहे बाबा। ही लवली क्रीम आहे जेका तव्हां मतिलब ॾींहं जो बि लॻाए सघो था ऐं कंहिं फंक्शन में वञो था, पार्टी आहे या फिर जेके कॉलेज वेंदियूं छोकिरियूं हूंदियूं आहिनि, या तव्हां जेका जॉब आहे, तव्हां स्कूल वञो था, या कोई भी तव्हांजो कमु आहे, तव्हांजे पर्स में बस व्हाइट एस लवली क्रीम हुजे, यानी कि सफ़ा मेकअप वारो फार्मूलो अची वेंदो तव्हांजे चेहरे ते ऐं तव्हांखे ख़बर पवंदी त एतिरो ज़बरदस्त हिकिड़ी लवली क्रीम तव्हांखे निखार ॾे पई त तव्हां उनखे इस्तेमालु करे पंहिंजी ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणे सघो था। व्हाइट एस जी जेका लवली क्रीम आहे न बाबा, रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन्स एड कया विया आहिनि। इन लाइ एड कया विया आहिनि त तव्हांजी स्किन ते जेके वाइटमिन्स जी कमी हूंदी आहे न उहा पूरी थींदी रहे। वाइटमिन्स की कमी जब पूरी होती रहेगी तो आपके चेहरे पर निखार और खूबसूरती तो खुद ब खुद आता जाएगा। तो व्हाइट एस की लवली क्रीम ये एक फेयरनेस फार्मूला है। जो लोग फेयरनेस क्रीमें लगाना पसंद करते हैं या जिनके चेहरे पर ऐसा होता है कि आप मेकअप नहीं लगा पाते, मेकअप से ऐसा होता है ना कि भाई आपकी स्किन मजीद खराब हो जाती है, खास करके सेंसिटिव स्किन वालों, तो मेकअप अगर आपके चेहरे पर सूट नहीं करता तो बस सिर्फ आप जो है व्हाइट एस लवली क्रीम लगा लीजिए, आप मिनटों में रेडी हो जाएंगे, चुटकियों में रेडी हो जाएंगे और आपके चेहरे पर एक प्यारा सा निखार भी आ जाएगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एस लवली क्रीम से मिलने वाला है। तो व्हाइट एस की लवली क्रीम तो बिल्कुल आप लगाएंगे, साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी पता होना चाहिए कि अब सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियां आ रही है तो व्हाइट एस का जो है ना वो आपके लिए लोशन भी मौजूद है। और लोशन जो है ये भाई ट्रिपल वाइटमिन्स का फार्मूला है और ये बड़ा आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देगा। तो जिन लोगों को लोशन चाहिए होता है, खास करके हमारे चाचे को, तो चाचे को जो हमारा लोशन चाहिए तो वो आप जो है व्हाइट एस का लोशन ले सकते हैं जो कि ट्रिपल वाइटमिन से बना हुआ है। और इसके अलावा आपकी स्किन मॉइस्चराइज कर देगा और साथ साथ जो है ना हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि व्हाइट एस के अंदर मौजूद है। 3 अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। एक लेमन का वेरिएंट है, दूसरा जो है वो जनाब रोज का वेरिएंट है और तीसरा हीरे का वेरिएंट है। ये तमाम चीजें हैं व्हाइट एस के, मतलब मुझे लगता है व्हाइट एस वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट रेडी कर लिया है ताकि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों को परेशानी ना हो, बस आप जाएं और अपने हिसाब वाला प्रोडक्ट परचेज करें और खूबसूरती का जो है ना दरवाजा आपको मिल जाए कि अब हमने खूबसूरत होना है, बस ये हमारे हाथ में प्रोडक्ट है और अब हम इसे लगाएंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से व्हाइट एस के ये तमाम प्रोडक्ट्स लगाइए, आप पिक कीजिए आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के हिसाब से है। जो व्हाइट एस ब्यूटी क्रीम हो, व्हाइट एस सोप हो, व्हाइट एस का फेस वॉश हो, डॉक्टर पिंपल ट्यूब हो या फिर व्हाइट एस लवली क्रीम हो या फिर लोशन ही क्यों ना हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा लाएंगे, आपको हसीन प्यारा खूबसूरत बना देंगे। ये जनाब लगाने के लिए और साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर मंगाने के लिए आपको जो नंबर्स बताए जाते हैं उनके ऊपर भी राबता रखा करें और कॉल या फिर मैसेज करके उनको बता देंगे आप भी परचेज करना चाहते हैं व्हाइट एस की तमाम रेंज को। और डायल कीजिए 0332738 4309। बड़ी 332 73 84 309। बो नंबर आ 03-1250-25907। बड़ी 312 50 59 970।

हजारो भलो गानो हलायो हो मेरा चना जी आवाज ने सेहरो आहे वैसे ही सेहरो असा के हिदायत अल्लाह फरमाइश कई ला केंजी शादी तो कराई तहां जी तनती थे ना मतां थी भी सगे तो थींदी जे त तहां असन जा प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कया है चाहे वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या और ये वाइटी जो प्रोडक्ट्स हो बाबा जरी ता इस्तेमाल करना ताके खबर पानी तो वाकई खूबसूरती काथे लिखेल हो अच्छा ये पैनल जी तरफ अचूं था त तमा जा खोट सारा मैसेजेस जमा थी वया हैं सो पढ़ी वठना सी

हमारे साथ यहाँ पर महबूब अली मोरो सिटी से कहते अस्सलाम वालेकुम सदरा मुस्कान कुंज माशाल्लाह आपका प्रोग्राम और क्या बात है स्टार्टिंग जीती रहो सदा दिल खुश हो जाता है आपको सुनकर सो नाइस ऑफ यू थैंक यू वेरी मच प्यारा सोना बहुत आसा की मोरो में ज्वाइन कर हुआ है और मोरो से अजहर अली भट्टी भाई है और आप हमें सुन रहे हैं जी सॉन्ग शाहिद अली बबर का सुनना चाहते मैं कोशिश क्या थी तो गानों हलाई अच्छा गोट मोहम्मद तैयब थिबू का हबीबुल्ला थिबू के आरजे सिदरा मुस्कान शो तवां जो वेरी वेरी नाइस आए सलाम तवां के वालेकुम अस्सलाम तवां के सजाद रुस्तमानी भाई हमें मातली से सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद अब्दुल्ला महर कहते हैं मीरपुर खास से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ब्यूटीफुल है मैं और मेरी पूरी जो फैमिली ना वो यूज करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है सॉन्ग आपकी पसंद का एंड सिंगर हमारी पसंद सिंगर फैजाली डेडिकेट आपको और डेडिकेट किया है नोरीन कराची वाली को डेडिकेट चाचा को डेडिकेट वाह सही वाह सही गोले गोले डेडिकेट क्यों थे अब्दुल्ला भाई आपको वेलकम कहते ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए बाकी जो लोग व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं वो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते रहिए शहजाद अली राजपर फ्रॉम बसीरो वालेकुम अस्सलाम अदी सदा की आई हो अल्लाह आपको खुश रखे प्रोग्राम इज वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच प्यारा सोना भात आज मोहब्बत हुआ है और मोरो से महबूब अली भाई तमाम भी चाहिए बाबा मोरो जी जो रेडियो ते प्रोग्राम थोड़ो सही न पो हले इन लाइ मूं मैसेज करे छॾियो आहे अल्लाह कंदो सही थी वेंदो चाचा कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट बिल्कुल चाचा तव्हांजो गानो हलाए वठूं था मकसूद मना हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से कहते हेलो हेलो जी मैं भी तो आपका शो सुन रहा हूँ और जी बड़ी बड़े लोग आदाब से सारे ये आपने शायद शायरी लिखी लेकिन शायरी की टांगे वांगे तोड़ दी आपने तो इसको हम पढ़ना जो है ना वो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं बाकी चौथा सिदरा मुस्कान जी सिंधी सिंधी मुझे भली आए छोटो का जो कंधा आयो मुझे सिंधी थे और हमारे साथ जीपाल भाई कहते हैं टॉपिक भाव जी बचपन में एक गलती हुई थी तो मेरे पप्पा जी ने हुक्का पानी बंद कर दिया था मैंने पूछा कितने दिन मंथ के लिए हमारे मॉम ने साथ दिया एक मंथ खर्चा बंद किया वक्त था वो भी क्या बात है जी मेरे को लगा खाना पीना बंद कर दिया लेकिन खर्ची बंद सही सही खर्ची टेंशन ना है बाबा खाना पीना बंद हो जाए तो वो जरा मुश्किल वाली बात हो जाएगी और आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए ठीक है जयपाल भाई और मुझे बताएं खुशी कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है और फजली हमारे साथ कहती है वालेकुम अस्सलाम हैप्पी हैप्पी आफ्टरनून और माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिदरा मुस्कान जी कैसी हो मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसी हैं सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स टॉपिक डियर स्वीटी मुझे ऐसी कोई सजा नहीं मिली थी बचपन में मैं सबकी लाडली रही हूँ जाना ओके आप रही हैं बाकी तो सब नहीं रहे होंगे ना वही बता रहे

वाह साईं वाह गानो बुधो था सभी के गानो वणे पयो और निसार मोलाई भा तवा के बे सनो प्रोग्राम वणे पयो पर तामो के हाल अहवाल दियो तवा वाईटी सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना कोन आई हा तवा सभी जला अलग अलग प्रोडक्ट्स मु ठाराया आया है यानी के ता के फेस वॉश अठनो आ ता वाईटी जो फेस वॉश लगाए सगो था साबुन हणदा ता वाईटी जो साबुन लगाए सगो था वाईटी सी ब्यूटी क्रीम भी आ जनाब नाइट क्रीम अगर तवा इस्तेमाल करन चाहता कोई सुठो फार्मूलो हल्को फार्मूलो जे जे अंदर खीर हो जे एवोकाडो हो जे एलोवेरा हो जे तो तवा जे लाए देखो ना वाईटी सी ब्यूटी क्रीम मौजूद आ वरी कंहिंखे एक्नी प्रॉब्लम आहे दाणा नथा छॾनि त तव्हांजे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ठारायो थी मां वरी कंहिंखे कोई फेयरनेस क्रीम लॻाइणी आहे जेका तव्हां ॾींहं जो लॻाए मेकअप जी ज़रूरत तव्हांखे न पए त तव्हांजे लाइ वाइट एसी लवली क्रीम ठाराई थी मां इहे सभु प्रोडक्ट्स तव्हां वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां वञी वठी अचो ऐं हीअ सभु प्रोडक्ट तव्हांखे मुनासिब पैसनि में मिलंदा ऐं मुनासिब पैसनि सां गॾोगॾु तव्हांजे स्किन जे लाइ ॾाढा फ़ाइदेमंद आहिनि छो त ही सभु जेके प्रोडक्ट्स आहिनि नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहिनि वाइटमिन्स जो भरपूर फार्मूलो आहे सो लॻाईंदा रहो तव्हां मर्द मायूं सभिनी जे लाइ आहिनि बाबा खूबसूरती हासिल करणु सभिनी जो हक़ आहे सो बोलो बाबा साडा हक़ एतिरे रख

0: अली रज़ा लगारी भा ये गानो हले पे शमन जो एंजॉय करे वेठो मुगल उमरानी भा से गड मौजूद आए थैंक यू हजार भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा वेलकम कहते तमाम के और नजर मोहम्मद भट्टी भाई हैं हेलो जी मैं ठीक हूं तामुदा की
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अरे न खुश्क और बेरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियो कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे चावर जो खूबियो जिल्द में फाइन लाइंस झुरन के घट कर रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे से चेहरे के मिले खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

वापस अच्छी आशा के दफो बीहर तमाम प्रोग्राम बुधो पाया वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड है बाबा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी तावन सा सो हिते असा प्रोग्राम जी लास्ट लिंक भी अच्छी वया जिन मानो हाने हाने बुधन स्टार्ट करे जके स्टार्टिंग हा वठी असा सगड मौजूद है सबनी जो मोहब्बत हुआ बाबा ताकी चौथा भली करी आया आपकी मोहब्बतें समाधि कर चाहते हैं और इनका अलावा जेको आहे सो असा के दे सोना सोना मानो बुधन पाया जिन में असा सगड शामिल आहेन सखरवारा मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर माजली बोरियाबाद ए लाड़कानी जो समातो एडा दसो खोड़ सारा खूबसूरत मानो से सगन मौजूद आ जेके वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करी रहया आ आही ते असा तवा के भला भला गाना भी बुधराई रहे सो ही फैजाली जी आवाज में गानो हले पर जेको असा अब्दुल्ला भाई के डेडिकेट कयो सी अच्छा तुम पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो तेज सही मां चाहती क्या मां तां के वाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधाया थी अगर तुम वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया जी बिल्कुल वाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर तुम इस्तेमाल कयो पया तो तां के खबर हो जाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम की जी क्वालिटी है ना वो तमाम

हे गानों की गाने जी कट दिया बुधायो सुमाटू ने गाने जी फिर मार्च किया है बिल्कुल गानो मजेदार है पर गाना बुधनासी करो गट तवा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करना त मजो अच्छी वेलो अगर वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जे क्या तवा जे करीबी जनरल स्टोर से नता अवेलेबल कोन थे त नजला तवा के नंबर बुधाई दी आया जेदी तवा रातो करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल भी कराए सको था आप नंबर जो वो नोट करी वेठो अगर अना तई तमा कोन कयो आहे सो नंबर आहे 033-27-38-43-09 बुड़ी 300-32-73-84-309 आई बियो नंबर आहे 03-12-50-25-907 बुड़ी 312-50-25-907 ही नंबर सां जेके तमा डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सगो था आई वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो जेको भी प्रोडक्ट तमा के लगे तो ही प्रोडक्ट असां जे हिसाब वारो आहे त तमा उनके परचेस कयो आई पोई तमा इस्तेमाल कयो ठीक है तमा के सफा भला रिजल्ट्स मिलंदा रहंदा आई तमा सोना सोना थींदा रहंदा

इंद्रपाल भाई हमारे साथ हैं। इंद्रपाल भाई क्या कहने आपके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। और बिल्कुल ऐसे ही आप व्हाइटिश की लवली क्रीम लगाते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल करे वो लगाए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में इजाफा ला देगा। कहते ही अल्लाह मालिक है बाकी ठीक है। और ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी सिद्रा, आप कैसी हो? माय नेम इज तहमीना आपी। एक राज की बात बताओ, अच्छा कहती है कि जब आप सिंधी बोलती हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि आप सिंधी बोल रही हैं। आप बहुत ही कमाल की आ रही। और टॉपिक का जवाब है कि जब बचपन में अम्मी कुछ कहती थी तो समझ ही नहीं आती थी, तो अम्मी चांटा मारती थी। ओके, उन्हें जो पो असर लगे तो हले तो आई तवा तमीना ब मैसेज कया नहीं सेम तवा जब मैसेज अच्छी वया असांजे पैनल ते। सो थैंक यू सो मच सोनी, तव्हां सां सगर मौजूद आहे, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि बाबा। ईअं कॾहिं कॾहिं पंहिंजे हुजण जो सबूत ॾेई छॾींदा कयो। और हमारे साथ जुलरी खां खालिक लाशारी शो वी आई पी आहे। थैंक यू वेरी मच खालिक भाउ। अच्छा मां कोशिश कयां थी लास्ट में का जयपाल भाई पोइट्री तव्हांखे ॿुधाए वठंदमि, ॾिसां टाइम बची वियो त हिते इलाही सारा कॉमेंट जमा थी विया आहिनि। ऐं ली मथे भॼंदा था वञनि, ओ ईअं भॼंदा था वञनि। अच्छा हमारे साथ गुल यासीन नाज भाई, आपको वेलकम हो गया। चाचा कहते हाँ लोशन में लगाऊंगा, बिल्कुल आप लोशन जाइएगा परचेज कीजिएगा, व्हाइट एज का आपको लोशन मिल रहा है, बहुत ही कमाल का लोशन है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि या तारिक भाई को बोल दें, भाई तारिक भाई को बोल दें, तारिक भाई आपको पहुंचा दे के घर बैठे। और गदा हुसैन कहते हैं के वन्य अच्छा कहते हैं आज डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई, मुझी शादी थी रही आहे, कल आपने दुआ की काम दिखा दिया। भाई आपकी दुआ दिसो, मुझी दुआ के लिए फास्ट सर्विस वाकई मुझी दुआ असर कंदी था। दिसो तां कल मुखे चयो दादी मुझी शादी न पई थी, जॾहिं में डेट फिक्स थिए थी त कुझु न कुझु फैमिली में थी वेंदो आहे। ऐं तव्हांजी ॾिसो हाणे शादी थींदी, इनशाला ख़ैर सां तव्हांजी शादी थी वेंदी, तव्हां ओतिरे ॾींहंनि में तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा रहो, ठीकु आहे। ऐं वरी तव्हां जॾहिं व्हाइट एज जो ई फार्मूलो ट्राए करे ॾिसंदा न त तव्हांखे इन मां बि भलो रिज़ल्ट मिली वेंदो। सो तव्हां लॻाईंदा रहो शादी ताईं सफ़ा ईअं पपू थी वञो। जी वैसे हिदायतला सही बात है, शादी वाले गाने सुनकर मज़ा ही आ जाता है। मोहम्मद जमान भाई जियो करे इससे। दर्दे दिल कहती है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख और मेरा इंतजार देख। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। अच्छा एसन अली बुक्टी हमें लारकाना से सुन रही है, एसन भाई आपको वेलकम हो गया। फराज दहरी सुन रहे हैं, कहते हैं मजहर और मजहर की तरफ से सलाम, सो वालेकुम असलाम दोनों भाइयों को वेलकम।

अच्छा अख्तियार अली गबर भाई हमें सुन रहे हैं, विलेज मोहम्मद उस्मान गबर, जुल्फकार अली गबर, अली दोस्त गबर, प्रोग्राम बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच प्यारा भात, हम पाने गोठन में भी वाइट एसा प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था।

ताजा नजर मोहम्मद भट्टी भा तव्हां खे प्रोग्राम वणे पियो गाना वणनि पिया सो बाबा बिल्कुल ई असांजो सोहणो प्रोग्राम आहे जंहिंखे तव्हां ॿुधंदा आहियो ऐं जंहिंमें तव्हांखे ख़ूबसूरती जा राज़ बि ॿुधाया वेंदा आहिनि किशोर भाई कहते की मूं ते कावर करण खां बहितर आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो ओ इहा ॻाल्हि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो बाबा जी सोहणा थी वञो गदा भाई कहते हैं सदरा देख लो आज मैंने आपको तकरीबन 10 मैसेज किए लेकिन आपने मेरा एक भी मैसेज नहीं पढ़े सारे पढ़े लेकिन ये अलग बात है कि आपने सुने नहीं होंगे अपने मैसेज तो प्रोग्राम जब मैं कर लूँ ना तो फेसबुक पर हमारी ये पोस्ट जो है ना उस पर सारी रिकॉर्डिंग पड़ी होती है तो आप वो सुन लीजिएगा ठीक है गदे दिल कहती है कि मैं बहुत मासूम थी तो मुझे कोई सजा नहीं मिली यानी कि आप ऐसे कोई काम करती नहीं थी कि आपको सजा मिली ऐसा है ना अच्छा चाचा तव्हां जेको गानो चयो न उहो अहिड़ो गानो जेको 5 बजे वारे प्रोग्राम ॿुधंदासीं ठीकु आहे चोरी चोरी चुपके चुपके समझी वञो पाण

ॾाढा हक़ एथे रखमावी त इहो ई चवां थी वञो ऐं पंहिंजे पंहिंजे हिसे जी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करे अचो. तव्हां कहिड़ो बि प्रोडक्ट वठी ईंदा उहो तव्हांजे ख़ूबसूरती में चार चंड लॻाए छॾींदो. वैसे तव्हां रेगुलर कोई कमु कयो था, को जॉब कयो था या पढ़ो था, पढ़ायो था, त तव्हांजे लाइ वाइटिश लवली क्रीम सफ़ा बेस्ट रहंदी बाबा. वाइटिश लवली क्रीम हिकु फेयरनेस क्रीम आहे जेका तव्हां बसि ईअं चहिरे ते लॻाए छॾींदा, तव्हां चुटकिन में रेडी थी वेंदा. ऐं वाइटिश लवली क्रीम जेका इहे तव्हांजे चहिरे ते जेको आहे न ईअं बि थींदो आहे त पघर बि इलाही लवली क्रीम अगरि तव्हां लॻाईंदा आहियो त चहिरे ते पघर निकिरी ईंदो आहे या वरी हीअं निशाने निशाने ठही वेंदा आहिनि. त जॾहिं तव्हां वाइटिश लवली क्रीम लॻाईंदा त अहिड़ो को बि सीन न थींदो ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ा स्मूथ हूंदी ऐं उबतो तव्हांजे चहिरे ते जेको हिकिड़ी शाइनिंग अची वेंदी. जॾहिं तव्हां वाइटिश लवली क्रीम लॻाए करे ॿाहिरि निकिरंदा त माण्हू तव्हांखां पुछंदा, आए हए चमको पिया.

सां ॿुधाए बाबा इहो कहिड़ो प्यार आहे तव्हां वाइट एज जा प्यार कोन पिया वठो इहे मोहबतूं न आहिनि बाबा मोहबतूं दोनों तरफ़ से निभाई जाती हैं समझो था न ऐं रिहान खान खोसो भाई में सुन रही वालेकुम असलाम प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया मुमताज़ मलिक जो गानो बिल्कुल तव्हांखे ॿुधायोसीं और हमारे साथी रमज़ान भाई रमज़ान भाउ तव्हांजो गानो जेको पंज बजे वारे प्रोग्राम ॿुधूं था ठीकु आहे हीअ मरियल गाना पंज बजे वारे प्रोग्राम में फरमाइश कंदा कयो और फराज डेहरी कहते हैं क्या कमाल की क्रीम है हाँ ना वही तो बताते हो बस अलग आला तो हम लगाईंदा ना लगाए ने सो सोना थी वेदा अच्छा फहीम शेख भी आ चुके हैं फहीम भाई कहते हैं कि खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं चेहरे धो नहीं सकते आईने बदलते हैं वाह वाह वाह वाह वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम यारे भाके चौंधा भली करी आया सुमाटो कहते हैं कि सदरा चाचू लाए भी दुआ अगर चाचू जी शादी तो थी वही या नहीं तवा जला क्या पर तुम वाइट एज का प्रोडक्ट लगाए तवा जी भी शादी थी वेंदी हजार भाई कहते हैं कि आपका शो रिकॉर्ड होता है एफबी पे सिस्टर फिर भी आप इतना बस ये भाई आप लोगों की मोहब्बतें होती है कि आप ऐसा समझ जाते हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू ये आपका प्यार है अच्छा जयपाल भाई लिखते हैं कि सोच समझ कर रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम सोच समझ के रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम जब चलते हैं तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता पोइट्री मैंने सुना दी अब आपकी बारी इरशाद इरशाद क्या जाए एक मिनट वेड़ो पानी सीट थे

बातें ऐसी होती है ना जो हम वक्त गुजरते साथ ही समझते हैं, क्योंकि जैसे वक्त गुजरता है तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोगों की असलियत हमारे सामने आती जाती है, और वैसे ही हम समझते हैं कि भाई हमने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर ली है। तो किसी को अपने जज्बात हो, ऐसा साथ हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो या फिर कदर हो, बल्कि कुछ भी देने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि आपकी दी हुई चीज उसके नजदीक कितनी कदर रखती है, क्योंकि हर कीमती चीज हर शख्स के लिए कीमती नहीं होती, और कभी कभी हम अपनी कीमती चीजें ऐसे लोगों पर भी लुटा देते हैं जो उनकी कदर करना जानते ही नहीं। तो जब भी आप ये तमाम चीजें किसी पर निशावर करने की कोशिश करें तो ये जरूर देख लें कि वो इंसान इन चीजों के काबिल भी है या नहीं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे लोगों पर लुटा चुके हैं जो नहीं करना चाहिए था। तो कोशिश किया करें अपनी जिंदगी में अपना ख्याल रखें, और अपने ख्याल के साथ साथ अपने चेहरे का भी ख्याल रखें, और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। बहुत सारी हमारे पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि आप लगा कर ना सिर्फ खूबसूरती को हासिल कर सकते हैं बल्कि आप हमेशा के लिए हसीन भी बन जाएंगे।

ओके जी हेडे होडे अलाय छाछा तब हाँ अच्छा हाँ फहीम भाई गाना एंजॉय कीजिए और यहीं पर बस आप लोगों से लेते इजाजत वरी तौसा मुलाकात मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में थे पे सो फहीम भाई कहते हैं आपका अचानक ट्यून क्यों चेंज हो जाता है यदा खुश रहा करी ओके सांजो हुकुम यो दायो और बस मोकलानी आ ऐसन कहते ही माम भी बैठो हाँ पर खामोश कोई गाल न कोई गाल है न तो मुसा ता मुसा गाल है नहीं के बे के छड़े दियो बाबा चलो 5 बजे वाले प्रोग्राम में मिलूं पांजो ओ हिरो सारो ख्याल रखना किते का गलती थी हो जाए तो माजरत केनो को मैसेज रेजियो को गानो शानो रेजियो तो बाबा माजरत कयूं था मोकलानी ना ही सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
0: आप सुन रहे थे

0: केपीअ में समूरा कदम आइन मूजिबि खया आहिनि। वफ़ाकी हुकूमत जी का बि सियासी एजेंडा न आहे। हाणे केपी हुकूमत में दहशतगर्दनि जो को बि हमदर्द न आहे। केपी हुकूमत में निज़ाम मुकमल तौर ते मफ़लूज थी वियो। सिंध समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तरण चयो आहे त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिकु ई मुल्क में ॿ पॉलिसियूं कीअं हली सघनि थियूं। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण चयो आहे त केपीअ में दहशतगर्दीअ जे वाक्यनि में ॻणितीअ जोगी वाद थी। खैबर पख़्तूनख्वा में सदर आइन तहत एमरजेंसी लॻाई।
1: They got no ships, they got no nothing, they got no leaders even. That's the problem. We might have gone too far with the leaders because we don't know who the hell we're dealing with anymore. Nobody wants to be the president of Iran. They have roll calls. Who would like to be the president? Nobody. I don't want it. We're having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. Could have stopped at level one. Level two and level two and a half is probably going too far.
2: अमरीकी सदर ईरानी क़यादत खे निशानो बणाइण लाइ हद पार करण जो एतराफ़ करे वरितो। रूस ऐं चीन पारां ईरान जी मदद करण वारियूं ख़बरूं बि रद्द करे छॾियूं। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरानी क़यादत खे निशानो बणाइण में अमेरिका हद खां निकिरी वियो। हाणे जंग जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि में मुश्किलात जो शिकार आहियूं। चीन ऐं रूस ईरान जी मदद न करे रहिया आहिनि। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम गरीबाबादी चयो आहे त अमेरिका जे जवाब जो जाइज़ो आख़िरी मरहले में आहे। जल्द जवाब ॾिनो वेंदो।

जो समूरे बोगियूं पटड़ी तां लई वयूं, छह मुसाफिर फोत, केतरा ई जख्मी। रहमान बाबा ट्रेन कराचीअ खां पिशावर वेंदे मुल्तान वटि हादसे जो शिकार थी वई। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफिर सवार हुया। रेलवे पारां हादसे में छह मुसाफिरनि जी तसदीक थियण जी तसदीक करे छॾी। ट्रेक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते ॾुख जो इज़हार। ज़ख़्मियुनि खे बहितरीन तिबी सहूलियत फराहम करण जी हिदायत।

0: सां गनशॉट थियो आहे ज़ालिम मुड़ुस खे उन ॿार जेके आहिनि उहे उन्हनि खे नशे वारी शइ ॾिनी वई आहे प्लस में सुइसाइड नोट जो मिलनि ऐं यादि रहे की सुइसाइड नोट हैंड रिटन नोट आहे उहो टाइप रिटन नोट या प्रिंटेड नोट न आहे ऐं जॾहिं घर मालिकान आया आहिनि उहो ज़ोर सां खड़कायो अथनि नेठि दरवाज़ो तोड़ियो अथनि बॉडी जो पोस्टमार्टम हाणे बि थी रहियो आहे हर एंगल खां ॾिसंदासीं जेके हक़ीक़त तव्हां दोस्तनि सां शेयर कजो
1: मलीर जे फलकनाज सोसाइटी जे घर मां हिकु ई कुटुंब जे पंज भातियुनि जा लाश थाया आहिनि फोतियुनि में घरधणी शाहज़ेब संदसि ज़ाल सबा भेण शुमाइला मासूम धीअर आर्या ऐं आयज़न शामिल आहिनि पुलिस जो चवणु आहे त ॿिन्ही ॿारनि ऐं नारी शुमाइला खे ज़हर ॾेई मारण बाद घरधणी शाहज़ेब ज़ाल खे क़तल करण बाद आपघात कयो आहे घर जो दरवाज़ो बि अंदरां बंदि हो इलाइक़े वासियुनि ॿुधायो आहे त शाहज़ेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो हो आई जी सिंध वाके जो नोटिस वठंदे डी आई जी खां रिपोर्ट तलब करे वरिती

0: खैरपुर शाहदौलती यूनिवर्सिटी में दाखिला लाइ प्री एंट्री टेस्ट 4000 खां वधीक उमेदवारनि जी शिरकत यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया एंट्री टेस्ट दौरान कापी रोकण में नाकाम पाबंदी बावजूद शागिर्द टेस्ट दौरान मोबाइल फोन जो सरेआम इस्तेमाल कंदा रहिया सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम इंतिहाई सख़्त
1: मेहर भरसा इंडस हाईवे ताण जातल शख्स जो चिचरियल लाश हथायो आहे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे सुञाणप न थी सघी आहे
0: कराची में सीटीडी ऐं असास इदारनि जी गॾियल कार्रवाई चार शकी दहशतगर्द गिरफ़्तार सीटीडी तर्जमान मूजिबि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सीटीडी ऐं वफ़ाक़ी सां सिविल इदारे जी गॾियल कार्रवाई कयूं आहिनि कार्रवाइयुनि दौरान पाबंदी मड़ियल तंज़ीमुनि जे चइनि दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे गिरफ़्तार दहशतगर्दनि में ग़ुलाम यासीन आफ़ताब अहमद ऐं शुएब समेत चारि ॼणा शामिल आहिनि दहशतगर्द असास हंधनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि जी रथाबंदी करे रहिया हुआ

0: खैरपुर में बदमनी खिलाफ़ केंगी ताल के जेवी खावादी का स्कूल जो उस्तादन जो धरणो उस्तादन वधंदड़ बदमनी खिलाफ़ एहतजाजी मुजाहरो करे शाह हुसैन बाईपास वट धरणो हयो। कोट जी में भी बदमनी खिलाफ़ रिंद बिरादरी जो महरान हाईवे ते एहतजाज इलाइक़े में अमुन अमान बहाल कराइण जो मुतालबो।
1: हैदराबाद में मदीना टाउन वासी औरतुन जो पुलिस जे मुबैना ज़ियातन खिलाफ एहतजाज घरन ते चढ़ाई करे नौजवान के गिरफ्तार करण जो इल्ज़ाम। औरतुन मूजिब पुलिस बिना जवाब घरन ते चढ़ाई करे नौजवान के खंभे गुम करे छड़ियो आए। गिरफ्तार नौजवान के आज़ाद करे जिम्मेवारन खिलाफ कार्रवाई करे इंसाफ कयो वञे।
0: मीरपुर खास भरसा रोड ते लगल पेट्रोल यूनिट्स के बाहे लगी वही टे जणा सड़ी जख्मी थी पिया। टंडो आदम नाके वट पेट्रोल के बिन यूनिट्स के बाहे लगी। बाहे विसायण की कोशिश दौरान फायर ब्रिगेड अमले के बिन मुलाजमन समेत टे जणा सड़ी जख्मी थिया। जख्मियों के अस्पताल मुंतकिल कयो वयो। फायर ब्रिगेड कुछ देर की मेहनत बाद बाहे ते जब्तो आंदो।

0: स्कूलन अंदर सहूलतूं ऐं उस्तादनि जी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। बिरया सिटी बरसां ॻोठ दाऊद विस्तरो जे प्राइमरी स्कूल में सहूलतुनि जी खोट ख़िलाफ़ शागिर्दनि पारां एहतजाज कयो। खोड़ा में ॻोठाणनि जो ॻोठ जो प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर परे मुंतकिल करण ख़िलाफ़ एहतजाज। उडेरो लाल स्टेशन भरिसां ॻोठ मोलो ॾिनो मीरजत में प्राइमरी स्कूल में उस्ताद मुक़ररु न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। नगर पार्कर में शागिर्दनि ऐं ॻोठाणनि जो स्कूल जे बंदिश ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। फरीदाबाद में बि उस्तादनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज जारी।
1: दादू में थरड़ी मोहबत भरिसां समावती तकरार सां क़त्ल थियल औरत वारे केस जो जिर्गो ज़रिए निबेरो थियो। धुरियुनि ते गॾियल तौरु 90 लख रुपया ॾंड लॻायो वियो। ॻोठ मीर मोहम्मद भंड में समावती तकरार सां औरत जे क़त्ल ऐं घर खे बाहि ॾियण जो फ़ैसिलो थियो। साहब ख़ान ऐं गुलज़ार भंड विच में हलंदड़ तकरार जो महबूब भंड जी सरपंचीअ में निबेरो थियो। साहिब ख़ान भंड ते औरत जे क़त्ल जो 75 ऐं गुलज़ार भंड ते साड़न जो 15 लख रुपया ॾंड मुक़ररु कयो वियो। निबेरे खां पोइ ॿिन्ही धुरियुनि खे भाकुर पाराए खीर फंड कयो वियो।
0: ऐं शिकारपुर वेझो चोर मंदर मां 2 लख रुपए जो सामान बुहारे विया। चोर मंदर मां सोन, रोक रक़म, नवादात, पखा ऐं ॿियो सामान चोरी कयो। मंदर जी सार संभाल कंदड़ पवन कुमार चयो आहे त चोर मंदर जा ताला तोड़े दाख़िल थिया, कुझु बुहारे विया। चोर गिरफ़्तार करे सामान वापसि करायो वञे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
6: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है। Super

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ऐं बीरोनो की स्किन हाँ इन्हीं जलाए छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहे में आहिन चावरन जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उनजी नमी के लॉक करे ऐं चावरन जो खूबियों जिल्द मां फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जमहूरियत खे हलाइण लाइ बचा जमूर आणो पवंदो। पाकिस्तान खे रीबोट करण वारो ऑप्शन ॾिसी रहियो आहियां। केपीअ में फैसल करीम कुंडी परफॉर्म न कयो त नओं सेटअप अची वेंदो। सेनेटर फैसल वाडा चयो आहे त पाकिस्तान जो झंडो न खणंदड़नि जा नस्ल तबाह करे छॾींदासीं। मुहाफ़िज़ शहीद थियण ऐं अवाम मज़ाक कयो, ईअं न थींदो। अवाम हाणे नारनि जे पुठियां ख़्वार न थींदो। खैबर पख़्तूनख़्वा खां सिलसिलो शुरू थियो आहे। पीटीआई हाणे किथे बि नज़र न ईंदी। केपीअ में समूरा कदम आइन मूजिबि खया आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत जी का बि सियासी एजेंडा न आहे। हाणे केपी हुकूमत में दहशतगर्दनि जो को बि हमदर्द न आहे। केपीअ में हुकूमती निज़ाम मुकमल तौर ते मफ़लूज थी वियो। सुद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अतातरण चयो आहे त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिकु ई मुल्क में ॿ पॉलिसियूं कीअं हली सघनि थियूं। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण चयो आहे त केपीअ में दहशतगर्दीअ जे वाक्यनि में ॻणितीअ जोगी बात थी। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सदर आइन तहत एमरजेंसी लॻाई। अमरीकी सदर ईरानी क़यादत खे निशानो बणाइण लाइ हद पार करण जो इतराफ़ करे वरितो। रूस ऐं चीन पारां ईरान जी मदद करण वारियूं ख़बरूं बि रद्द। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरानी क़यादत खे निशानो बणाइण में अमरीका हद खां निकिरी वियो। हाणे जंग जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि में मुश्किलात जो शिकार आहियूं। चीन ऐं रूस ईरान जी मदद न करे रहिया आहिनि। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादीअ चयो आहे त अमरीका जे जवाब जो जाइज़ो आख़िरी मरहले में आहे। जल्द जवाब ॾिनो वेंदो। यमनी हुसैन पारां हिकु भेरो ॿीहर सऊदी शहर रियाज़ खे निशानो बणाइण जी दावा। खुमेस मस्जिद में बि फ़ौजी अॾनि ते हमिलियो। सऊदी ॿिन्ही हमलनि जी तसदीक न कई। OIC सऊदी अरब ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहिनि। आला अदलिया में जजिस जी मुक़ररी लाइ जुडिशल कमीशन जो इजलास। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आज़म जो सलाहकार राणा सनावला ऐं ॿिया मेंबर इजलास में शरीक। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि इजलास में आला अदलिया में जजिस जी मुक़ररी जो फ़ैसिलो कयो वेंदो। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह पारां चीनी शहर वुहान में जदीद टेक्नोलॉजीअ दौरान मुख़्तलिफ़ मर्कज़नि जो दौरो। सिंध हुकूमत जो मसनूई ज़हानत डेटा सेंटर्स ऐं टेक्निकल तरबियत वारनि शोबनि में सहकार वधाइण जो फ़ैसिलो। स्मार्ट गवर्नेंस ऐं मसनूई ज़हानत खे हथी ॾियण लाइ चीन सां सहकार जी तजवीज़। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत रुॻो टेक्नोलॉजीअ जी ख़रीदारी नथी चाहे, मुकमल तरबियत ऐं सहूलतकारीअ जी ख़्वाहिशमंद आहे। डिजिटल मईशत लाइ जदीद कंप्यूटिंग ताईं रसाई ज़रूरी आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां यूरोपी यूनियन जे हिजरत बाबति कमिशनर जी मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं इंसानी स्मगलिंग खे रोकण ते ॻाल्हियूं। यूरोपी कमिशनर पारां इंसानी स्मगलिंग रोकण लाइ पाकिस्तान पारां खयल क़दमनि जी वाखाण। मोहसिन नक़वी चयो त इंसानी स्मगलिंग जी मुकमल ख़ात्मे लाइ गॾिजी कमु करणो पवंदो। मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जूं समूरियूं बोगियूं पटड़ीअ तां लही वियूं। 6 मुसाफ़िर फोत, केतिरा ई ज़ख़्मी। रहमान बाबा ट्रेन कराचीअ खां पिशावर वेंदे मुल्तान वटि हादसे जो शिकार थी वई। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफ़िर सवार हुया। रेलवेज़ पारां हादसे में 6 मुसाफ़िरनि जी तसदीक थियण जी तसदीक करे छॾी। ट्रेक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते ॾुख जो इज़हार। ज़ख़्मियुनि खे बहितर तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत।
1: सां गनशॉट थियो आहे ज़ालिम मुड़ुस खे, उन ॿार जेके आहिनि उहे उन्हनि खे शेवा शइ ॾिनी वई आहे। प्लस में सुइसाइड नोट जो मिलनि ऐं यादि रहे की सुइसाइड नोट हैंड रिटन नोट आहे, उहो टाइप रिटन नोट या प्रिंटेड नोट न आहे। ऐं जॾहिं घर मालिकान आया आहिनि उहो ज़ोर सां खड़कायो अथनि, नेठि दरवाज़ो तोड़ियो अथनि। बॉडी जो पोस्टमार्टम हाणे बि थी रहियो आहे। हर एंगल खां ॾिसंदासीं जेके हक़ीक़त मां तव्हां दोस्त सां शेयर कंदा।
0: मलीर जे फलकनाथ सोसाइटीअ जे घर मां हिक ई कुटुंब जे पंज भातियुनि जा लाश हथ फोतन में घर धणी शाहज़ेब संदसि ज़ाल सभा भेण शुमाइला मासूम धीअर आर्या ऐं आयज़न शामिल। पुलिस जो चवण आहे त ॿिन्ही ॿारनि ऐं नारी शुमाइला खे ज़हर ॾेई मारण बैदि घर धणी शाहज़ेब ज़ाल खे क़तल करण बैदि आपघात कयो आहे। घर जो दरवाज़ो बि अंदरां बंदि हो। इलाइक़े वासियुनि ॿुधायो आहे त शाहज़ेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो। आई जी सिंध वाक़े जो नोटिस वठंदे DIG ईस्ट खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। खैरपुर जी शाद लतीफ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लाइ एंट्री टेस्ट 4,000 खां वधीक शागिर्दनि जी शिरकत। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया एंट्री टेस्ट दौरान कापी रोकण में नाकाम। पाबंदीअ बावजूद शागिर्द टेस्ट दौरान मोबाइल फोन जो सरेआम इस्तेमालु कंदा रहिया। सिक्योरिटी इंतिज़ाम सख़्तु रहिया। मेयड़ भरसां इंडस हाईवे तां ॼातल शख़्स जो चिचिरियल लाश हथ इस्पताल मुंतकिल, जंहिंजी सुञाणप न थी सघी। कराचीअ में CTD ऐं हसास इदारनि जी गॾियल कार्रवाई। 4 शकी दहशतगर्द गिरफ़्तार। CTD तर्जमान मूजिबि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में CTD ऐं वफ़ाक़ी हसास सिविल इदारे जी गॾियल कार्रवायूं कयूं आहिनि। कार्रवाइयुनि दौरान पाबंदी मलियल तंज़ीमनि जे 4 दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गिरफ़्तार दहशतगर्दनि में ग़ुलाम हुसैन, आफ़ताब अहमद ऐं शुएब समेत 4 ॼणा शामिल आहिनि। दहशतगर्द हसास हंधनि ऐं क़ानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि जी रथाबंदी करे रहिया हुआ। खेरापुर में बदमनीअ ख़िलाफ़ किंगरी तालुके जे 20 खां वधीक स्कूलनि जे उस्तादनि जो धरणो। उस्तादनि वधंदड़ बदमनीअ ख़िलाफ़ इतिजाजी मुज़ाहिरो करे शाह हुसैन बाईपास वटि धरणो हयो। कोटरीजीअ में बि बदमनीअ ख़िलाफ़ रिंद बिरादरीअ जो मेराण हाईवे ते इतिजाज। इलाइक़े में अमन अमान बहाल कराइण जो मुतालबो। हैदराबाद में मदीना टाउन वासी औरतुनि जो पुलिस जे मुबैना ज़ियातियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज। घरनि ते चढ़ाई करे नौजवान खे गिरफ़्तार करण जो इल्ज़ाम। औरतुनि मूजिबि पुलिस बिना जवाब घरनि ते चढ़ाई करे नौजवान खे खंभे गुम करे छॾियो आहे। गिरफ़्तार नौजवान खे आज़ादु करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। मीरपुर खास भरसां रोड ते लॻल पेट्रोल यूनिट्स खे बाहि लॻी वई। 3 ॼणा सरी ज़ख़्मी। टंडो आदम नाके वटि पेट्रोल जे 2 यूनिट्स खे बाहि लॻी। बाहि विसाइण जी कोशिशि दौरान फायर ब्रिगेड हमले जे 2 मुलाज़मनि समेत 3 ॼणा सरी ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड कुझु देरि जी महिनत बैदि बाहि ते ज़ाब्तो आंदो। दादूअ में थड़ी मोहबत भरिसां संगावती तकरार तां क़तल थियल औरत वारे केस जो जरगे ज़रिए निबेरो थियो। धुरियुनि ते गॾियल तौर ते 90 लख रुपया ॾंढ लॻायो वियो। ॻोठ मीर मोहम्मद भंड में संगावती तकरार तां औरत जे क़तल ऐं घर खे बाहि ॾियण जो फ़ैसिलो थियो। साहब खान ऐं गुलज़ार भंड विच में हलंदड़ तकरार जो महबूब भंड जे सरपंचीअ में निबेरो थियो। साहब खान भंड ते औरत जे क़तल जो 75 ऐं गुलज़ार भंड ते घर साण जो 15 लख रुपया ॾंढ मुक़ररु कयो वियो। निबेरे खां पोइ ॿिन्ही धुरियुनि खे भाकुर पाराए खीर खंडु कयो वियो।

0: पक ऐं ॿियो सामान चोरी कयो। मंदर जे साल सार संभाल कंदड़ पवन कुमार चयो आहे त चोर मंदर जा ताला टोड़े दाख़िल थी सभु कुझु ॿाहिरि विया। चोर
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट।
6: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ऐं बेरोन की स्किन हण इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेमे आहिन चारन जो खूबियो ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे ऐं चारन जो खूबियो जिल्द मां फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम दीहन में जिल्द के बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे
4: निकरी वयो हाणे जंग जे खात्मे लाइ ॻाल्हियुनि में मुश्किलात जो शिकार आहियूं. चीन ऐं रूस ईरान जी मदद न करे रहिया आहिनि. ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादीअ चयो आहे त अमरीका जे जवाब जो जाइज़ो आख़िरी मरहले में आहे, जल्द जवाब ॾिनो वेंदो. यमनी हुसैन पारां हिकु भेरो ॿीहर सऊदी शहर रियाज़ खे निशानो बणाइण जी दावा. खमेस मशीद में बि फ़ौजी अॾे ते हमिलो. सऊदी अरब ॿिन्ही मुल्कनि जी तसदीक न कई. OIC सऊदी अरब ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहिनि. आला अदलिया में जजिस जी मुक़ररीअ लाइ सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि जुडिशल कमीशन जो इजलास. सिंध हाई कोर्ट जे आइनी बेंच जे मुदे में हिकु साल वाद जी मंज़ूरी. इजलास में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी राणा सना लाइ पहिरियों भेरो शरीक थिया. ज़रियनि मूजिबि चीफ जस्टिस यहया आफरीदी बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो आदर भाव बि कयो. कमीशन वकील अहसन वोन जी डिग्री बि तसदीक करे छॾी आहे. वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां चीनी शहर वुहान में जदीद टेक्नोलॉजीअ वारनि मुख़्तलिफ़ मर्कज़नि जो दौरो. सिंध हुकूमत जो मसनूई ज़हानत, डेटा सेंटर्स ऐं टेक्निकल तरबियत वारनि शोबनि में सहकार वधाइण जो फ़ैसिलो. स्मार्ट गवर्नेंस ऐं मसनू.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid aur Jadid formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
6: GFM 88 Network, सिंध की आवाज.

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

खूबसूरती वो जो नजर आए, जैसे इन फूलों की बागात में, कुदरत के हसीन नजारों में। और चेहरे की खूबसूरती नजर आती है एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम एडलवाइस एक्सट्रैक्ट क्रिस्टल वाइट एक्टिव कंबाइन व्हाइटनिंग फॉर्मूला डे एंड नाइट ब्यूटी क्रीम, जो स्किन के अंदर लहर तक जाकर असर दिखाए, जेल से डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स और दाग धब्बों को मिटाकर स्किन को क्लियर करे, दिन बदन जेल को ब्राइट करे, तीन दिनों में चेहरे को गोरा और खूबसूरत बनाए और चेहरे को दे फूलों जैसी ताजगी हर रोज। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम, आ प्रोडक्ट ऑफ फाइव स्टार कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल। हेल्पलाइन नंबर 03073468474।

0: जी क्या ही बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने यहाँ पर एंजॉय किया, और साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात है जी, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से आप एक्सपर्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं, खूबसूरती की हिफाजत कर सकते हैं और हमेशा के लिए हसीन, प्यारे और पुरकशिश भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि भाई साहब एक्सपर्ट ब्यूटी प्रोडक्ट जो है आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम आखिर आप क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये जनाब एक कंबाइंड व्हाइटनिंग फार्मूला है। ये जो कंबाइंड व्हाइटनिंग फार्मूला होता है ना, बड़ा लाइट सा फार्मूला होता है। इसकी खास बात ये होती है कि आप इसे हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मरतबा अगर आप चेहरे की वजह से थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारी स्किन जो है हमें बड़ा परेशान कर रही है, अगर आपकी स्किन आपको परेशान कर चुकी है या फिर आपको कोई भी अपने हिसाब वाला प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिला है, तो आप एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम का यूज कर लीजिए। क्योंकि एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना नेचुरल अज्जा एड रखे गए हैं। अगर आप भी कोई नेचुरल अज्जा वाला प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं जिसके अंदर नेचुरल चीजें हो, और SPF 25 भी मौजूद की गई है जनाब एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम के अंदर। और सबसे बेहतरीन बात, एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये जनाब डे एंड नाइट क्रीम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी क्रीम होनी चाहिए जिसे आप दिन में भी लगाएं और रात में भी लगाएं, तो आपके लिए एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम मौजूद है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप दिन में लगा रहे हैं या फिर आप रात में लगा रहे हैं। तो एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम और एक्सपर्ट ब्यूटी सोप आप सब लोगों के लिए खुश आमदीद के साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि एक्सपर्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोग कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो उसके लिए आपको नंबर बताऊंगी, उसके ऊपर आप रابطہ कीजिएगा। और रابطہ करने के फौरन बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई साहब आप अपने एरिया के अंदर भी एक्सपर्ट ब्यूटी क्रीम और एक्सपर्ट ब्यूटी सोप को अवेलेबल कराएंगे। तो जल्दी से डायल कीजिए 03 14 17 05 55 8 03 14 17 05 55 8। जल्दी से ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और इस्तेमाल करते जाइए। भाई खूबसूरती के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता, अपनी खूबसूरती को पहचानिए और एक्सपर्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते जाइए। अच्छा, बहुत सारे आपके कमेंट्स जमा हो चुके हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे और कुछ कमेंट्स ऊपर ना चले जाएं इसलिए मैं जल्दी से कमेंट्स की जानिब आ जाती हूं। ये मौजूद है हमारे साथ, गुड इवनिंग, हेलो आरजे सिद्रा मुस्कान जी, आप कैसी हैं? योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच, आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। फहीम भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, कुछ देर अपनी दहलीज पर पड़ा रहने दे, कुछ देर अपनी दहलीज पे पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। कहते हैं अदा, हम फिर से आ गए आपके शो में और आपके शहर की चिंचियां बहुत देख चुके, अब लाड़काना से कराची की तैयारी हो रही है। अच्छी बात है जी, जाइए जाइए, काश हमारे लिए भी ऐसा कोई ऑप्शन होता। अबू हनीफ अल बलोची हमें सुन रहे हैं, गुड इवनिंग कहते हैं प्यारे भाई को। और हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हैप्पी गर्ल माई मोस्ट फेवरेट आरजे सिद्रा जानी, क्या आप कैसी हो, तबीयत कैसी है आपकी, खैर से आ गई इस प्यारे शो में। उस दिन मैंने आपको मैसेज किया था बट आपने मुझे नहीं पहचाना, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गई, मैं कुछ दिन प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाई थी, मेरे पास मोबाइल नहीं था, वरना मैं आपका प्रोग्राम आपके प्रोग्राम में शामिल होती, ये आपको भी पता है। एंड वेलकम बैक जाना, आपको भी वेलकम कहते हैं हैप्पी गर्ल, आपको खुश आमदीद के साथ साथ। हाँ वो थोड़ा ऐसा है कि मैं भूल जाती हूँ आजकल कुछ चीजें लोगों को भी भूल जाती हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो बस ऐसा है कि आप आया करें प्रोग्राम में, अपने होने का एहसास दिलाया करें।
1: मोहब्बत अली मल्हा साहब अवे तमाम घणी महिरबानी, मोहब्बत अली मल्हा अवां सां शामिल थी चुका आहिनि जी जनाब, मोहम्मद अली मल्हा अब्बास अली आबिद हुसैन मल्हा वॾा वॾा अवांजा, अवां सां शाहिद मल्हा बि गॾिजी ॿुधे थो, कहिड़े कुर्ब वेठा माण्हू ऐं तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे, मोहबतूं ऐं अनेक अहसान तव्हांजा जी जनाब, असांखे ज्वाइन कयो आहे हफ़ीज़ुल्ला लाशारी साहिबु।

पर शायद ईअं तव्हां लिखियो आहे या खुरेड़ी लिखियो आहे। बहरहाल हाणे जेको लिखो त हुन में थोरो साफ़ सुथरो लिखिजो ताकी असांखे ख़बर पए त असांखे केरु महिरबानी कहिड़े ॻोठ शहर खां मिले थो।

सनोबर मटियारी का ज्वाइन किया शो पसंद करने लाइ मेहरबानी लख थोड़ा तुम लिखो है असं शमन बुधरा जो शमन मीराली जरूर शो में शामिल होंद है तमाम घनी मेहरबानी वेलकम चवे सनोबर तक रोहड़ी का असा ज्वाइन किया मोहम्मद सुलेमान अब्दुल हमीद तमाम घनी मेहरबानी अब्दुल सतार शेख भी असें बुधे पो तहबानी ए गुट हाजी गुलाम खासकेली झंडे मरी का कुर्बान अली खासकेली बुधे पो किरोड़े कुर्ब मिठा मानू आई झलूरी का खालिक लाशारी बुधे तो सुना साई अवज मोहब्बत थैंक यू आई गुलाम सेन जलालानी का नाज फकीर मोहम्मद जलालानी बुधे पो अवज मेहरबानी महबूब नाज जलालानी आई मुख्तियार नाज जलालानी आरजू असलम जलालानी अवज तमाम घड़ी मेहरबानी मोहब्बत जो अव असेंगे ज्वाइन थैंक यू खुश हुजो आई आबाद हुजो किरोड़े कुर्ब तुझा सुना साई मोहब्बत ओके जनाब गुड ट्रैक है नगमा नाज जो आवाज है गजी बुधो था एक ब्रेक है का वापस मिलंदासी पर कमर्शियल ब्रेक हों उन का पोए मिलंदासी केदा नवन जो प्रोग्राम है जारी हो सारी नंडड़े ब्रेक का वापस इंदो अवां जे पेंचो यूनिस बकारी बस गडो दासी

0: बैंकल हबीब, रिश्तों भरोसे जो।
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को

0: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

माथे तुला जी घलीकार खुश जो आबादू जो तारण में चंड ऐं खीर में खंडू जो मिठी थरपारकर खां मलक मोहम्मद बलोच बुधे पियो। मलक मोहम्मद बलोच साहब, शफी मोहम्मद बलोच ऐं तमाम घणी महिरबानी भलीकार चवंदासीं तव्हांखे जो तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे। ऐं शहनाज़ गुल बलोच, वेलकम, थैंक यू जो अवां असांखे यादि कयो। ऐं थरपारकर खां असांखे नोटो खां ज्वाइन कयो आहे। जी हा, रामचंद कुमार कोहली ॿुधे थो, गोविंद कुमार कोहली ॿुधे पियो ऐं कमलेश कुमार कोहली ॿुधे पियो। अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानी, थैंक यू अगेन, थैंक यू। लुटको मोरी सांगड़ का अब्दुल रहमान लगारी मैसेज कयो ऐं मिठा खां लगारी यादि कयो आहे। तालिब हुसैन लगारी ॿुधे पियो। मिठा माण्हू किरोड़े कुर्ब तव्हांजा ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तमामु घणी महिरबानी हुजो तव्हां असांखे यादि कयो ऐं मैसेज मोकिलियो आहे, थैंक यू भलीकार चवंदासीं। अव्हांखे कुट सरफराज़ राजड़ खां असांखे मैसेज खिपरो खां मोकिलियो आहे। सुमार भिली भील, दिलीप कुमार भील, अव्हां जूं महिरबानियूं। ऐं अब्दुरहीम बजीर ॿुधे पियो, अव्हां जूं वॾियूं महिरबानियूं, थैंक यू। आलम खान जरवार खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार, मोहम्मद इदरीस जरवार ॿुधी रहियो आहे। अव्हां जूं बि तमामु घणी मोहबतूं ऐं अव्हांखे बि चवंदासीं भलीकार। ऐं ॻोठ जाम खान लगारी, अली रज़ा लगारी, आकिब ऐं अज़हर लगारी ॿुधनि था, थैंक यू वेरी मच। सुहिणा साईं मोहबतूं अव्हां जूं। ऐं सजण सांगी जी वांडम गुलाब गुल असांखे ज्वाइन कयो आहे मिठी थरपारकर खां, थैंक यू। शुक्रगुज़ार आहियूं तव्हांजा ऐं जो अव्हां असांखे यादि कयो वॾा वॾा। बाबो वेरो थरपारकर खां, दिलीप कुमार मेघवाड़, नोवल राय मेघवाड़, दानिश कुमार मेघवाड़, सूरज गुल मेघवाड़, शंकर मेघवाड़ ॿुधे पियो। किरोड़े कुर्बा वांजा सोणा साईं, शाद हुजो, आबाद हुजो, तमामु घणियूं महिरबानियूं। ऐं खबड़ी भिट खां असांखे तालके साले पट खां ज्वाइन कयो इरफान अली थेबे, इरफान थेबा।

नज़ीर अहमद मंगरियो साहब रोहड़ी सखर का बुधन पाया तमाम घनी मेहरबानी लिखे तो उस्ताद मिठू कच्छी बुधराए जो कोशिश के भी सुना साई बिल्कुल कोशिश कर दासी ताई बुधराए ये आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क हलाऊं था साज़े आवाज़े साथ में एक ट्रैक करा शमन मीराली जी सदा हवा में गूंजे थी अमा बुध प्या GFM 88 सखर GFM लाड़कानु GFM मेर प्रभास GFM मोरो GFM मेहरापुर GFM सकरंट GFM मटियारी ऐं GFM मातली जो गड़ियल आवाज शो आहे सिंधड़ी जी शाम आई इन लम्हात में अवां सां गॾु यूनिस बकारी जो सलाम।

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज़।
1: Health is wealth, जहां माही डॉक्टर शेख

0: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
1: ॿिन्ही ऐवाननि जे इजलासनि बाबति हिकमत अमली जोड़ी वई. वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि नून लीग जी पार्लियामानी पार्टीअ जो इजलास, इतिहादनि जी बि शिरकत, हिकमत अमली जोड़ी वई. पीटीआई बि पार्लियामेंट में एहतजाज जी तयारी करे वरिती. ख़बर पख़्तूनख़्वा में समूरा क़दम आइन मूजिब खया आहिनि. वफ़ाक़ी हुकूमत जी का बि सियासी एजेंडा नाहे. हाणे ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत में दहशतगर्दनि जो को बि हमदर्द नाहे. वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो आहे त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिकु ई मुल्क में ॿ पॉलिसियूं कीअं हली सघनि थियूं. कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ चयो आहे त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्दीअ जे वाक़नि में ॻणती जोगी वाधि थी आहे. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सदर आइन तहत एमरजेंसी लॻाई आहे. जेयू सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जी अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई ऐं राजा नासिर अब्बास सां मुलाक़ात. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद पैदा थियल सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि. मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त पार्लियामेंट मां इस्तीफ़ाऊं न ॾिनियूं वेंदियूं.

0: जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में हिकड़ी कॉल आहे, ॾिसंदासीं त उहा कॉल कंहिंजी आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: केरु साहब ऐं किथां खां?
1: इरफान अली थिबो, गुलाबी संगत खपड़ी बिट तालका साले पर ज़िला सखर खां।
0: तमामु घणी महिरबानी इरफान अली थिबा साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला, मतारा जोड़।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। असांजी इहा ई ख़्वाहिश आहे, पर काश तव्हां वांगुरु ॿिया ॿ मुल्क न साईं।
1: तव्हां ॾिसंदा आहियो त मुंहिंजा जेके नाला हूंदा आहिनि, भले ॾह बि नाला हुजनि, त मां कोशिश कंदो आहियां त उहे नाला मां जल्द खां जल्द खणी वठां। ईअं न आहे असांखे सिर्फ़ नालो ऐं ज़ात खणणी आहे दोस्त जी, असां हुनजी एड्रेस न ॿुधायूं त टाइम बचे।
0: हा बिल्कुलु, काफ़ी दोस्त वरी एड्रेस ॿुधाईंदा आहिनि, जहिड़ो शनाख्ती कार्ड ठाहिण वारा कोन हूंदा आहिनि।
1: मां जीअं चवां साईं, यूनिस भाउ ॿुधे थो असांखे, यूनिस बकारी बदीन मातली में, बाबर भाउ असांखे ॿुधे थो सखर शहर में, शहरनि जा नाला न खणूं न।
0: हा और खाली दोस्तनि जा नाला खणनि, हाणे वरी ईअं त पोइ आरजे वारो कमु लिसनर करे त पोइ फ़र्क़ु कहिड़ो थियो।
1: हा बिल्कुल यूनिस वासो, इनशाला दोस्त सम्झी वेंदा ऐं टाइम बचाईंदा। नाला भले सभिनी दोस्तनि जा खणो, पर हुननि जी एड्रेस न कयो।
0: सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे, सही था चओ। थैंक यू सर। तमामु घणी महिरबानी। इरफान अली थिवे साहब ॾाढो सुठो मशवरो ॾिनो त दोस्त फ़क़्त पंहिंजे दोस्तनि जा नाला खणनि, बल्कि हिन जे उबतड़ खणनि था, उन्हनि जी एड्रेस वठनि था, ॻोठ जो नालो वठनि था, जो उहो आरजे जो कमु आहे, उहो बि लिसनर जेकॾहिं कनि त पोइ आरजे ऐं लिसनर में ॻाल्हि त हिकु जहिड़ी हूंदी, कहिड़ी नई शइ असां पेश करे सघंदासीं। बिल्कुलु इरफान, सही ॻाल्हि चई तव्हां, इनशाला दोस्त अमल कंदा, कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। तुंहिंजो साथ सितारनि वांगुरु, मुंहिंजो साथ निमाणनि वांगुरु, मुंहिंजो साथ सितारनि वांगुरु, मुंहिंजो साथ निमाणनि वांगुरु, दर्शन तुंहिंजो कीअं कयां मां, दूर रही थो तारनि वांगुरु।
0: तमामु घणी महिरबानी। केरु साहब ऐं किथां खां?
2: अगरि साईं रोड़ी सखर खां नज़ीर मंगरियो।
0: छा हाल आहे मंगरिया साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? अलाह पाक जा एहसान ॿुधायो, ख़ुशि लॻा अलहमदी दुआ लॻी पई आहे, बिल्कुलु हशाश विशाश
2: प्रोग्राम लॻे।
0: तमामु घणी मोहबतूं आहिनि, तव्हांजे ॿुधण जो अंदाज़ ख़ूबसूरत आहे, थैंक यू वेरी मच। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? वालेकुम अस्सलाम। किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू, थैंक यू भली कर। हीअ आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क, अवां ॿुधो पिया पंहिंजो ई शो सिंधड़ीअ जी शान। कॉल करण चाहियो था त नंबर आहे 0334352578। ॿुड़ी 344 पंटीह 25 786 ते हाणे ई कॉल। ॾिसंदासीं त कॉल ते असां सां गॾु केरु आहे। हैलो अस्सलाम वालेकुम। साईं अलहमदुलिल्लाह, तव्हां केरु साहब ऐं किथां खां? तमामु घणी महिरबानी उनास साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला। अलहमदुलिल्लाह, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो गॾिजी ॿुधे साईं?
2: वस्तुम अली चांवर, रोशन अली चांवर, हुन सां गॾु गुलाम रहीम बलोच, चवन कुमार कोहली, ऐं हिन सां गॾु मुंहिंजे फैमिली जा मेंबर आहिनि, जंहिं निहाल जी अकुलम जलालाणी, निशार लाल जलालाणी, महबूब लाल जलालाणी, शिजात हुसैन जलालाणी, अख्तियार हुसैन जलालाणी, जवाहर मुखीम रज़ा जलालाणी ऐं ज़ीशान हैदर जलालाणी।
0: तमामु घणी मोहबतूं, महिरबानी, लख थोरा सुहिणा साईं, शाद हुजो, आबाद हुजो।

0: उस्ताद मिठू कच्छी जो आवाज़ हम ॿुधो पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क तां सिंधड़ीअ जी शाम ॾिसंदासीं त असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे. हैलो, अस्सलामु अलैकुम. हैलो, अस्सलामु अलैकुम. आवाज़ अचे पियो? सभा नवस. छा हाल आहे सभा नवस? अलहमदुल्ला, वहांजी दुआ लॻी पई आहे. तव्हां ठीकु आहियो, ख़ुशि आहियो? गाने वारो सेगमेंट इनशाला जल्दी रखंदासीं. अॼु रखूं हा, पर वरी चयोसीं त कुझु वक़्तु रखी, पोइ इनशाला इहो सेगमेंट वरी शुरू कंदासीं. तव्हांखे शो कीअं थो लॻे? तमामु घणी महिरबानी. मां थोराए थो तव्हांजो. अलाह सां ई करे शाद ऐं आबाद हुजो. भली भली. सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त. थैंक यू वेरी मच. लख थोरा. थैंक यू, थैंक यू. अलाह हाफ़िज़. सबनास जंहिं ज़बरदस्त ॻाल्हि कई ऐं हुन सां गॾो गॾु यादि ॾियारियो त गीत पिरोली जेको सिलसिलो आहे कॾहिं था शुरू कयो, ऐं हिकिड़ो ज़बरदस्त शेर पोइ ॿुधायो. ॾिसंदासीं हाणे असां सां गॾु केरु हूंदो जेको असां सां शामिल थींदो. हलो, अस्सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. केरु साहिब ऐं किथां खां? जी, छा हाल आहे एंडर साहिब? ख़ुशि आहियो? अलहमदुल्ला, अलाह पाक जा किरोड़े करम आहिनि. मां थोराए थो अव्हांजो सोणा साईं. अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी जी जी वालेकुम अस्सलाम. मोहबतूं ऐं किरोड़े कुर्ब मिठो माण्हू, ख़ुशि.
1: गुलाबी गुल असीं ॿई पाण में ॼाण सजण ते में गुलाबी गुल असीं ॿई पाण में
0: ॾिसंदासीं त कॉल ते असां सां गॾु केरु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: जी, केरु साहिब ऐं किथां खां? छा हाल आहे गुलाब गुल? दुआ अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला. अव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे? जी जी, महिरबानी. लख थोरा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जी जनाब, यार खे परचाइणो आहे.

0: डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम.
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
2: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का. एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखे. मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें. तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा.
3: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंडी हन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: ऐं बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खबे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चावरन जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रीस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कर ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट. गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल. सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
5: आँखों के सबसे बड़े इदारे के मशहूर और तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी और सर्जन डॉक्टर स्टार मोहम्मद हयात खान सफेद मोती का ऑपरेशन बजरिया लेजर फेको काले पानी का इलाज और ऑपरेशन पर्दों की बीमारियों का इलाज और आँखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं. रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं. एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर आंखों का अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास. फोन नंबर 0303-261-7077.
6: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
7: सिंध का शहर खास
6: मीरपुर खास.
8: अवां चायो था त अवां जो पैगाम बियन ताई पहुंचे. अवां चायो था त अवां जी प्रोडक्ट जी मशहूरी थिए तपोए अवां वट आहे मौजूद जीए मीरपुर खास एफएम 88 जो आवाज जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंद. जीए मीरपुर खास एफएम 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो. जीए मीरपुर खास एफएम 88 वधिक राबते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर 0332-2724-301 0333-3722-071.
6: मीरपुर खास की आवाज
9: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ. जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.

0: रुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: जी जनाब डिस्नासी थाने कॉल ते के रहा सर कद हेलो अस्सलाम वालेकुम। छा हाफिज़ ज़ोहेब साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला अलहमदुल्ला अलह साई जा एहसान है रहमतपुर मोहलो लाड़कानो की है ठीक आ
1: जबरदस्त
0: जबरदस्त हाँ
1: राज सूमरो फरहान बेरो ही आसिफ चाचाड़ो तामा जागीरानी हतर मतलब सोलंकी ज़ैब कटबर मेरे फैलावा ज़ैब कटबर जनेर कटबर जनलाबी कटबर
0: तमाम घणी मोहब्बतों ऐं मेहरबानी सोणा साईं खुश हुजो आबाद हुजो तारण में चंड ऐं खीर में खंड हुजो।

0: जी जनाब कॉल पे हलंदासीं ॾिसंदासीं केरु आहे. हलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: जी केरु साहिब ऐं किथां खां? रुस्तम अली पवर साहब खे भलीकार चवंदासीं. साईं अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे?
1: साईं तव्हांजो प्रोग्राम तमामु ज़बरदस्त पिया ॿुधूं ऐं कुझु दोस्त पिया
0: ॿुधनि.
1: शौकत अली जखराणी, रहमत अली जखराणी, इरफान थेबो, चोवन कुमार कोली, दिलीप कुमार मेघवाल, मोहम्मद आचर खासकेली, कुर्बान अली खासकेली, अब्दुरहमान लगारी, मलक मोहम्मद बलोच, मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो, प्यार अली लुंडनाज, फकीर मोहम्मद जलालानी.
0: कहिड़े कुर्ब मिठा माण्हू, कहिड़े कुर्ब लख थोरा तव्हांजा. साज़ ऐं आवाज़ जो साथ सिंधी जी शाम. यूनुस बकारी जो सलाम. जी जनाब कॉल ते हलंदासीं ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे. हलो अस्सलाम वालेकुम. हलो जी जी चैनिया साहब छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? अलह साईं जा अहसान आहिनि. तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे मिठो माण्हू?
2: मुंहिंजा भाइर अलादा चवंदो, मौलादा चवंदो, मुंहिंजो प्यारो दोस्त आहे दुलकार चवंदो, इम्तियाज़ चवंदो,
0: जी जी
2: बलोचिस्तान पाकिस्तान ॿुधे पियो मंताज़ चवंदो, बाक़ी जेके ॿुधी रहिया आहिनि सॼी संगत खे सलाम.
0: तमामु घणी महिरबानी. वालेकुम असलाम. वालेकुम असलाम. ऐं वालेकुम असलाम.

ओके जनाब तपाईं कॉल जो सिलसिलो जारी अरे सुताता सदा गरी कॉल ते के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम

0: किसना सी ते कॉल ते के राहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम भाकेड वाले गुड बाबू मेरे थर पार कर कंगल है मैं दिलीप कुमार मेघवाड़ हूं
0: दिलीप कुमार छा हाल है खुश आयो वहां से करबी केर पे बुदे
1: जे जला जे सुकर रस्तम अली पवार मलक मोहम्मद बलोचा है मोहम्मद ताले लगा रही अब्दुल रहमान लगा रही के दोस्त बुदन बुदन पे मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो सबनी के सलाम दिलीप कुमार जी तरफा कुर्बान अली कात के लिए थैंक यू
0: मेहरबानी लख थोरा सोना साईं लख थोरा

0: जी जनाब, साजो सगड़ो सलामत हूँ तो सदाई तुम सा गड हूँसी। गाने में आए तो अजी मैं हमेशा मोकलाए तो वे, पर हकीकत में यो ट्रैक है जामिन अली जो ट्रैक है। इनके इंजॉय भी करो, पर दर्दी ले ट्रैक के इंजॉय दर्द वारा ही कंदा। फिलहाल दिसों दा कॉल ते ऐसा कर के रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम दा
0: जी, केर साहब है किथा का? कुर्बान है तुझे आवाज सफा घट पे अच्छी छाजे करे कावड़ा है छा है
1: नहीं हाँ आवाज सही बोलते
0: हाँ आवाज हाँ ने सही बोलते हाने आवाज सही है। आवाज अगर भी केर पे बुदे
1: दिलीप कुमार मेघवाल काटसी का गुलाम रसूल परी अजीज गलती खालिद लाशारी
0: जी मज़ेस दोस्तों छा मुझो आवाज अवा ताई पहुंचे पियो जेकॾहिं हा त ॿुधायां त ही आवाज़ जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क जे तमामु नेटवर्क तव्हां ॿुधो पिया। कॉल ते ॾिसंदासीं असां गॾु केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कची पुल खां अदनान चांडियो साहब, अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे? तबियत सही है, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। तव्हांजी दुआ आहे, तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? जी जी
1: जमाल खान ॿुधे थो हाजीमरी खां।
0: महिरबानी लख थोरा सोणा साईं। जी जनाब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।

0: सलासी थाने असनगर कॉल ते के रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, करा रहे ने?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। केर साहब है किथा का?
1: इधर जवल का इम्तियाज चांडी पे गला है।
0: इम्तियाज चांडी साहब वहां से कह दियो केर पे बुधे।
1: सर ये मेरा दोस्त है ने, भाई रहे ने, ज्ञानदार चांडियो।
0: हां
1: मंताज चांडियो।
0: जी जी।
1: बाबर चांडियो।
0: जी जी।
1: सर ये
0: मेहरबानी हो, मेहरबानी हो। लख सोना साई लख।

0: जी दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनर सिंधवी जी शाम में आखिरी लम्हात में यूनुस बकारी आखिरी सलाम काल ते केरा डसंदा हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केर साहब के था खा
1: ऐ पारो को ठकाया अली भट्टो सर
0: अयाज अली भट्टो साहब अली कार चवना सी ता के शुक्र अलहमदुलिल्लाह वहां जी दुआए ता ठीक आयो अल्लाह करे आबाद हुजे शाद हुजे तारन में चंड ऐं खीर में खंड हुजे जी जी नाला वठंदा अचो जी नाला वठो नाला वठो
1: भुट्टो
0: हा हा जी
1: मजीद भुट्टो
0: जी जी
1: वालेकुम
0: असलाम किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू थैंक यू लख थोरा खुश हुजो आप ओके जनाब हिकिड़ो ॿियो ट्रैक रेडी आहे क्यू शीट में उहो प्ले थिए पियो ॾिसंदासीं उहो ट्रैक कहिड़ो हूंदो ऐं कॉल वठी था वठूं ॾिसूं था कॉल ते बि केरु आहे असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केरु साहब आहे किथां खां छा हाल आहे खाखड़ साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो शुक्र अलहमदुल्ला अव्हां जी दुआ लॻी पई आहे ॾियो ख़बर थर जूं भोरियूं भिटूं ख़ुशि आहिनि इन करे दुआऊं कीअं कंदियूं हूंदियूं पाण त थर जूं भोरियूं भिटूं उदास हूंदियूं न हींअर हा भला अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे नाला वठो दोस्तनि जा हा ठीकु आहे महिरबानी साईं मोहम्मद ताहिर जिंजी साहब जूं महिरबानी ॿुधे पियो लख थोरा थैंक यू वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम ॿुधंदो हूंदो बल्कि उहो चवंदो हूंदो वालेकुम सलाम चओ थोरी देरि अॻु में कॉल कई वई आई किरोड़े कुर्ब सुहिणा साईं किरोड़े कुर्ब तव्हांजा थोरा

0: जी जनाब अचूं जा प्यारा अचूं जे अचण सां ई तूं थींदी वाह है ओके जनाब कॉल ते ॾिसंदासीं केर आहे हलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब ई किथां खां जी प्यारली ऐं असांखे बि केरु पियो ॿुधे
1: सलाम ॾियणु चाहींदासीं रुस्तम अली पवार खे दिलीप कुमार मेघवाड़ खे बलकवंत बलोच खे ऐं ॿिया जेके
0: महिरबानी लख थोरा थैंक्यू अने सलाम हवाउनि जे आधार पहुची विया जीअं जीअं टाइम ख़तम थींदो वञे तीअं तीअं कॉल्स जो तइदाद वधंदो वञे कॉल ते ॾिसंदासीं असां गॾु केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम केरु साहब ऐं किथां खां तैयब चांडियो साहब कीर्तर जबल जा कहिड़ा हाल आहिनि ठीकु आहे अलहमदुलिल्लाह असांखे ॿिए केरु पियो ॿुधे जी जी
1: अदनान चांडियो
0: जी जी महिरबानी लख थोरा साईं थैंक्यू कुर्ब दुखियासीं कोन आयो लुछियासीं पुछियासीं कोन उमेदूं हुयूं जंहिंमें वॾियूं जलियासीं मुआसीं कोन आयो फ़क़ति उन जे ख़ुशीअ ख़ातिर सभई पंहिंजा छॾियासीं छिनासीं कोन आयो फ़िलहाल काल ते ॾिसूं था केरु आयो हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां मोहबतूं कनि था छा करियूं भला
2: बसि असां बि हार न मञियोसीं मां चवां कोशिशि कयूं त हला करे लॻी वञे हाणे सफ़ा मयूस थी वियासीं
0: कोशिश कामयाबी जी कुंजी आहे
2: हा बिल्कुलु कामयाबी जी कुंजी आहे मां ॾिसूं उहा कीअं पाण को सही आहे मुंहिंजो ग़लति आहे कोशिशि कामयाबी जी कुंजी कामयाब थियूं था या न थियूं
0: था बिल्कुलु ईअं हूंदो आहे न कॉल हले पई त पोइ ट्राए कंदा रहो तव्हांजी कॉल ज़रूरु लॻंदी बाक़ी ईअं आहे त हाणे इहो माना कंहिं न नथो चई सघिजे त कॉल हरू बरू न लॻंदी लॻंदी अच्छा आवाज़ करे केरु पियो ॿुधे
2: हा सर नज़ीर अहमद मंगरो इरफान अली थेबो साहब
0: जी जी
2: ऐं ताहिर लुंड साहिब अलावर लाशारी साहिब ऐं इन खां अलावा ॿियो जिते आवाज़ वञे थो सभिनि दोस्तनि मुंहिंजी तरफ़ां खोड़ सलाम
0: वालेकुम सलाम थैंक्यू भली

0: केपी में समूरा कदम आइन मौजिब खया आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत जी का बि सियासी एजेंडा न आहे। हाणे केपी हुकूमत में दहशतगर्दनि जो को बि हमदर्द न आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर ताला तारण चयो आहे त दहशतगर्द जे ख़िलाफ़ हिक ई मुल्क में ॿ पॉलिसियूं कीअं हली सघनि थियूं। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण चयो आहे त केपी में दहशतगर्दीअ जे वाकियनि में गणतीअ जोगी बात थी। इक़्तदार पख़्तून क़ौमी सदर आइन तहत एमरजेंसी लॻाई।
1: भी यहां बैठ रहा हूं और फिर हमने 18-19 अक्टूबर को मरकजी मजिस्ट्रेट का इजलास बुला लिया है। आइंदा कल है हम
2: हुकूमत ने हमेशा आपको जो है मायूस किया है।
1: बाबा ये तुमसे पूछे मेरे साथ जो कभी पीटीआई नहीं की थी वो बरकरार रही। बैठो अच्छी है तो गवर्नमेंट कोई हल साहब आदात की जम तो हो सकती है लेकिन आवाम के हक आइन सियासत कसूम इससे कोई मुताबिकत नहीं।
3: जयू ए सरबराह मौलाना फजल रहमान के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचजई ए राजा नासिर अब्बास मुलाकात खैबरपुख्ता में इमरजेंसी ए गवर्नर राजवाद पैदा थियल सूरत हाल के ख्याल की डे वठ। मौलाना फजल रहमान है तो पार्लियामेंट में इस्तीफाओं न डनों पेथ
0: अपोजिशन लीडर के गालियन की दावत दई छी। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी है तो असेंबली स्पीकर हुकूमत ए अपोजिशन लाइ बराबर ए अण थुरियो है। अपोजिशन लीडर स्पीकर चैम्बर में अची गालियूं करे महमूद खान अचकज़ई के स्पीकर चैम्बर में जरूर अचण घुर्जे।
4: दिन का मतलब 180 दिन से पहले पे 30 डेज में भी आपके पास आऊंगा, 60 डेज में भी आपके पास आऊंगा। परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, अगर ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके इससे अच्छे आएंगे। इसमें बड़ी क्लैरिटी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि जी एक सेटअप आ गया है तो वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो बेटर रहेगा। कुंडली साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है।
3: फैसल करीम कुंडी परफॉर्म न कयो तो तब्दील थी वेंदो, नाकामी की का भी गुंजाइश ना है, रुगो कामयाबी घुर्बल है। सेनेटर फैसल वावडा केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी के वार्निंग दींदे चाहे तो फैसल करीम कुंडी की कारकर्दगी जो जायजो वो रहस।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है. तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है.
3: सुपर वाइट.
4: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी, आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जे मीरपुरखास FM 88 की आवाज जो आपका पैगाम शहर शहर गांव गांव पहुंचाए. आप भी कारोबारी इश्तहारात, आम ऐलानात, शादी ब्याह की मुबारकबाद, मिलाद, जलसा, स्कूल कॉलेजेस, ब्यूटी पार्लर्स, कॉस्मेटिक्स शॉप्स, जनरल और मेडिकल स्टोर्स, बुटीक, गारमेंट शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, ज्वेलर्स शॉप्स, अस्पताल, फ्री मेडिकल कैंप्स, NGOs, फूड पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स, शोरूम, ऑटो शॉप्स, हाउसिंग स्कीम्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, सकाफती मेला, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशंस, शादी हॉल, मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शॉप्स, सीड कॉर्पोरेशंस, सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को चार चांद, वो भी आपकी तवक्कोआत से कम रेट्स में. तो अभी रब्ता करें मार्केटिंग मैनेजर, मोबाइल नंबर 03322724301 और 03333722071.
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।

0: ऐं बेरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट ड्राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम आ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by.
4: साथ यहाँ बैठ रहा हूँ और फिर हमने 18-19 अक्टूबर को मरकजी मजिस्ट्रेट का इजलास बुला दिया है. आइंदा कल है हमारा.
5: हुकूमत ने हमेशा आपको जो है मायूस किया है.
4: बाबा ये उनसे पूछ, मेरे साथ जो कमिटमेंट पीजीआई ने की थी वो बरकरार रही. बैकलॉग किया है तो गवर्नमेंट
6: कोई
4: हाँ सब की इफादात की जम हो सकती है, लेकिन आवाम के आइन सियासत उसूल इससे कोई मुताबकत नहीं.
7: जयू सरबराह मौलाना फजल रहमान के पोजिशन लीडर महमूद खान चकजई ए राजा नासिर अब्बास से मुलाकात. खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी ए गवर्नर राजबाद पैदा थियल सूरत हाल के ख्याल की डे वठ मौलाना.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid aur Jadeed Formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
8: Aap sun rahe hain GAFM 88 Network, Sindh ki awaaz.

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।